कि भाई लोगों में एक बड़ा डर था, 10 लोगों में 7 लोग नहीं बोला कि भाई हम किसको पोल करें, तो मैं इसलिए सर्वे नहीं दिखाया। किससे डर था, मनोसी से था या उनसे था या पद्मना से था?

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: दिस इलेक्शन इज नॉट अबाउट वोट ओनली, दिस इज अ बैटल फॉर द फ्यूचर ऑफ बंगाल। आई एम जयंत घोषाल, ज्वाइन मी ऑन एनडीटीवी।
2: You're watching NDTV's coverage of the exit poll.

0: pretty decent Muslim population. Same for Entali. Jora Sanko and Shyam Pukur, on the other hand, which is represented by Dr. Shashi Panja, our minister, here you had a very interesting trend where in 2024, the BJP was actually leading over the Trinamool Congress, even though in 2021, the TMC has won. And Raj Bihari I've kept here simply because it's a high-profile seat. Manojji, Kolkata, आपने कहा कि बहुत possibility है बीजेपी जीतेगी. कौन सी सीटें इनमें से आपको लगता है?
1: ये जितनी सीटें दिखा रही है सब बीजेपी जीतेगी.
0: कैसे?
1: देखिए
0: आप मार्जिन देखें ना यहाँ पे 2020.
1: आप उसकी बात छोड़ दीजिए. आप वोट शेयर का भी देखिए, पिछली बार कितना पोल हुआ था और इस बार क्या हुआ था.
0: अच्छा, ऑल राइट. आप कह रहे हैं कि जो टर्नआउट है,
2: क्वालिफायर देता हूं. ऑल दीस सीट्स, इफ आई लुक एट समथिंग कॉल्ड द मार्जिन श्रिंकेज बिटवीन 21 एंड 24, ऑल ऑफ दीस सीट्स अदर देन जोरा सांको हैव अ डबल डिजिट margin shrinkage. Means that Trinamool's lead has shrunk, for example, from, by about 15% in Belghata between 21 and 24. So, ye jo puri jo winning margins hai na, 24 mein bahut reasonable ho gayi thi.
0: So, you are saying that in 3 years, their margin of win shrunk
2: is this number.
0: And added to that, the second factor, the voter turnout has gone up.
2: Absolutely.
0: So it's a double whammy.
2: Double whammy which is creating the impact.
0: But let me ask you this, Manojji. In places like Entali, in places like Chaurangi and Raj Bihari, जो एक कट ऑफ हमने पहले बोला था 30% मुस्लिम पॉपुलेशन, आप भी अग्री करते हैं कंचन गुप्ता से जब वो कह रहे हैं कि अब ये 30% का वीटो काम नहीं करेगा?
1: दूसरी बात मैं चल रहा हूँ कंचन,
0: आप वो बात मानते हैं क्या?
1: मैं उससे भी ज्यादा बता रहा हूँ आपको. कंचन दा ने जो बताया, जो 21 को हुआ, जो 21 में जो हुआ, मुस्लिमों ने 80% करीब करीब पोल किए थे पूरे ओवरऑल पोल का. उसमें से 75+ जो था वो टीएमसी को मिल चुका है और ये हाईएस्ट पोल है. और आपको बता दूं, भारत में कभी भी पोल हुआ, मुसलमान हमेशा हाईएस्ट ही पोल करता है. तो वो पोल 75% जो मिला था टीएमसी को, उसमें इंक्रीज नहीं होगा.
0: नहीं होगा, बट वो तो कह रहे हैं इस बार और मोबिलाइजेशन.
1: 80% पोल ही होता है तो क्या करेंगे? 75 से 76 जाएंगे, 77 जाएंगे, इससे ऊपर तो
0: वहां पे सैचुरेशन पॉइंट हो चुका है.
1: हो चुका, वो तो लॉक हो चुका है कि 75% से ऊपर मुस्लिम नहीं जाएंगे. पहली बात. दूसरी बात है कि पोल परसेंटेज उस समय कम हुआ था क्योंकि कोरोना भी था, और दूसरी बात है कि डर भी था. दोनों के कारण क्या हुआ था कि इन एरिया में जितने वोटर थे, जो जिसको कहा जाता है हिंदू वोटर या बंगाली वोटर कहिए या बिहारी वोटर कहिए, वो पोल करने गए ही नहीं. तो क्या हुआ कि टर्नआउट कम था हमारा. इस बार लोगों में भय कम हुआ, वो ज्यादा खुलकर आगे आए हैं और पोल करने गए हैं. तो इस कारण क्या हुआ कि वोट परसेंटेज बढ़ा है. यदि ये वोट परसेंटेज बढ़ना होता और टीएमसी का पोल रहता तो 2021 में हो चुका होता.
0: So you are saying that this higher voter turnout, and it is quite massive. You look at the increase, from 63 it's gone to 90 in Belghata. From 67 it has gone to 92 in Entali. From 60 it has gone to 86.58 in Raj Bihari. Yeah. All of this you are saying is the Hindu voter mobilizing.
1: Mobilize.
0: But how can you be sure कि ये सारे, no, but hold a second. How can you be sure कि ये सारे हिंदू वोटर बीजेपी के लिए वोट कर रहे हैं? हो सकता है कुछ टीएमसी के लिए भी वोट कर रहे हैं.
1: अभी
0: कैलकाटा में तो हिंदू वोट करते हैं ना.
1: मैं उस पे भी जाता. कल आपके यहाँ एक थे जो सर्वे करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई लोगों में एक बड़ा डर था. 10 लोगों में 7 लोग नहीं बोला कि भाई हम किसको पोल करें, तो मैं इसलिए सर्वे नहीं दिखाया. किससे डर था? मनोसी से था या उनसे था या पद्मना से था? जो वहां की सरकार थी उससे डर था ना. और वो सरकार से डर के नहीं बोल रहे तो उसको क्या मानेंगे आप? तो मैंने अपने
0: कि वो सरकार के खिलाफ वोट कर रहे हैं.
1: वो सरकार के खिलाफ कर रहे तभी नहीं डर रहे हैं. क्यों डरेंगे?
0: तो हमें ये एक्सट्रपोलेट कर लेना चाहिए कि अब जो इंक्रीज टर्नआउट है, एक वो हिंदुओं का है
1: जी.
0: और दूसरा दैट ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू गो एंड वोट अगेंस्ट द पीपल हु आर स्केयरिंग देम, व्हिच इज एंटी टीएमसी वोट पर.
1: उस समय भी एक 21 में, माने 2021 में, 21 में भी आप देखेंगे कि मुसलमानों का जो पोल हुआ था 82-83% 80 के बीच में हुआ था. कहीं पे 86 गया था, जैसे मिर्दिनापुर आप चले जाइए, मुर्शिदाबाद चले जाइए, यहाँ पे वो थोड़ा सा पोल अधिक हुआ था. लेकिन हर एरिया में जब आप जाएंगे सीट वाइज, तो आप देखेंगे कि कम से कम 80% मुसलमानों ने वोट दिया था. ये जो परसेंटेज था उसमें से 80% मुसलमानों का पोल का था.
0: ओके, सो वी आर सजेस्टिंग दैट दीस सीट्स इन द हार्ट ऑफ कोलकाता, द प्रेसिडेंसी रीजन, आर वेरी लाइकली टू फ्लिप. दीज आर 6 सीट्स फ्रॉम कोलकाता, टोटल ऑफ 11 सीट्स. एंड मनोज सिंह इज सेइंग दैट एज मेनी एज 6 to 7 इन कोलकाता कैन नाउ गो टू द बीजेपी.
3: Well, re-polling is underway in as many as 2 constituencies in West Bengal. My colleague Saurabh Gupta joins us from one of those constituencies. Saurabh, walk us through the details. What exactly is the voter turnout looking like

0: Good evening and welcome. Thanks very much for joining us here on Battleground 2026. I'm Padmaja Joshi and we...
1: Welcome back. This is Sarith Khorsani and you're watching NDTV. We're tracking the latest updates coming in from Punjab. Now, Punjab's political row is intensifying with the opposition targeting Chief Minister Bhagwant Mann over sensational claims. Now, the Congress has alleged that Mann was drunk inside the State Assembly, even demanding a breath analyzer test be conducted. Now, these are charges that have triggered a fresh political storm in the state. Responding sharply, Bhagwant Mann has denied all the allegations, calling them false rumours spread by the Congress to defame him. Now, the Aam Aadmi Party government has hit back, saying that the opposition is outnumbered in the Assembly and is now resorting to baseless attacks after the confidence motion was passed in the Assembly. Now, Finance Minister Harpal Singh Chima has also termed the allegations as a conspiracy, insisting that the public continues to trust the government. With both sides trading sharp accusations, the political temperature in Punjab remains high.
2: धिक्कार है, शर्मनाक है, लोकतंत्र के मंदिर में कोई राज्य का मुखिया खुद नशे की हालत में पहुंचता है और पूरे के पूरे राज्य को शर्मसार करता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, वैसे तो दुनिया ने उनको सैकड़ों बार शराब के नशे में पब्लिक प्रोग्राम में और कार्यक्रमों में देखा है, पर आज तो इंतहा हो गई जब उनकी हालत पूरे के पूरे देश ने देखी कि विधानसभा में वो नशे की हालत में कैसे बोल रहे थे। जो व्यक्ति खुद नशे में रहता हो वो अपने राज्य के लोगों को नशे से कैसे बचाएगा? कोई जवाब है केजरीवाल साहब के पास में?
3: भगवंत मान एक अल्कोहलिक है, सबको पता है, वो शराब पीता है और जब वो सांसद था तो वो शराब पी के आता था संसद में, सबको पता है। अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को मुख्यमंत्री क्यों बनाया? क्योंकि भगवंत मान एक कठपुतली है और अरविंद केजरीवाल है सुपर सीएम। अरविंद केजरीवाल को सबको कंट्रोल करना है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल के जो पार्टी है ऐसे ऐसे चूर चूर हो रहा है।
4: ये मुझे भी मीडिया के जरिए ही पता चला है, बिल्कुल हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की एजेंसियां हैं वो सभी जांच कर रही हैं। जो भी दोषी होगा वो उसको जल्द पकड़ लेंगे और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।
1: Moving focus and tracking more updates coming in at this hour. While the commercial LPG price hike has sparked politics, opposition has come down heavily on the central government, taking pot shots at the BJP. Leader of opposition Rahul Gandhi has launched a sharp attack at the centre over rising inflation, flagging a steep surge in commercial LPG cylinder prices, including a 993 rupee jump in a single day. Now, the Congress leader said that he'd earlier warned that inflationary pressures would rise after the polls, pointing to what he described as a sharp spike in the rates. Joining the bandwagon was Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin, who claimed that this was the BJP's plan after the polls were over. Now, Stalin even condemned the price hike and demanded the centre to roll back the LPG price hike. However, the centre defended the price hike, claiming that domestic LPG prices have not been hiked despite the Gulf War getting uglier by the day.
5: All common men, voters also, the price rise will go very high. And they cheated the voters of this country. We knew that they are going to rise this. Since the polling was not been done, after the polling they have done, it is a great cheat, the backstabbing the people of this country. So it is very unfortunate this BJP government is backstabbing every voter. That is why we decided to do the help them. And they doesn't have the proper foreign policy. The relationship between the neighboring countries have become worse.
6: सिलेंडर के बढ़ने से, गैस की कीमत बढ़ने से केवल सिलेंडर महंगा नहीं होता है, खाना पीना रोटी कारोबार और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। तो केवल सिलेंडर महंगा नहीं किया है, अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है और देखते जाइए किस किस चीज की कीमत बढ़ेगी। ये अपने लोगों का मुनाफा नहीं कम होने दे रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं कम हो रहा है।
7: इस तरीके से गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, कमर्शियल गैस में, ये जिस तरीके से वैश्विक संकट चल रहा है जो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और मेरी सरकार ने भी कभी भी इस बात से मना नहीं किया है कि ये चुनौतियां अगर इस तरीके से बरकरार रही तो यकीनन परेशानियां सबके लिए बढ़ सकती हैं, पर कई बार इसको लेकर जो भ्रम फैलाया जाता है और ऐसे में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व एक्टिव हो जाते हैं जो इसकी आड़ में होर्डिंग कर बिना वजह से महंगाई का माहौल तैयार करने का प्रयास करते हैं।
1: That was the beginning of a very short break. More news and updates on the other side.

0: If I look at something called the margin shrinkage between 21 and 24, all of these seats, other than Jorasanko, have a double-digit margin shrinkage. Means that Trinamool's lead has shrunk, for example, from by about 15% in Belghata between 21 and 24. तो ये जो पूरी जो विनिंग मार्जिन है ना 24 में बहुत रीजनेबल हो गई थी.
1: सो यू आर सेइंग दैट इन 3 years their margin of win shrunk
0: is this number,
1: and added to that the second factor, the voter turnout has gone up.
0: Absolutely.
1: So it's a double whammy
0: which is creating the impact.
1: But let me ask you this, Manoj ji, in places like Entali, in places like Chaurangi and Rash Bihari, जो एक कट ऑफ हमने पहले बोला था 30% मुस्लिम पॉपुलेशन, आप भी अग्री करते हैं कंचन गुप्ता से जब वो कह रहे हैं कि अब ये 30% का वीटो काम नहीं करेगा.
2: दूसरी बात मैं चल रहा हूँ कंचन,
1: आप वो बात मानते हैं क्या?
2: मैं उससे भी ज्यादा बता रहा हूँ आपको. कंचन दा ने जो बताया, जो 21 को हुआ था, जो 21 में जो हुआ, मुस्लिमों ने 80% करीब करीब पोल किए थे पूरे ओवरऑल पोल का. उसमें से 75+ जो था वो टीएमसी को मिल चुका है और ये हाईएस्ट पोल है. और आपको बता दूं, भारत में कभी भी पोल हुआ मुसलमान हमेशा हाईएस्ट ही पोल करता है. तो वो पोल 75% जो मिला था टीएमसी को, उसमें इंक्रीज नहीं होगा.
1: नहीं होगा, बट वो तो कह रहे हैं इस बार और मोबिलाइजेशन.
2: 80% पोल ही होता है तो क्या करेंगे, 75 से 76 जाएंगे, 77 जाएंगे, इससे ऊपर तो
1: वहां पे सैचुरेशन पॉइंट हो चुका है.
2: हो चुका, वो तो लॉक हो चुका है कि 75% से ऊपर मुस्लिम नहीं जाएंगे. पहली बात. दूसरी बात है कि पोल परसेंटेज उस समय कम हुआ था क्योंकि कोरोना भी था, और दूसरी बात है कि डर भी था. दोनों के कारण क्या हुआ था कि इन एरिया में जितने वोटर थे, जो जिसको कहा जाता है हिंदू वोटर या बंगाली वोटर कहिए या बिहारी वोटर कहिए, वो पोल करने गए ही नहीं. तो क्या हुआ कि टर्नआउट कम था हमारा. इस बार लोगों में भय कम हुआ, वो ज्यादा खुलकर आगे आए हैं और पोल करने गए हैं. तो इस कारण क्या हुआ कि वोट परसेंटेज बढ़ा है. यदि ये वोट परसेंटेज बढ़ना होता और टीएमसी का पोल रहता तो 2021 में हो चुका होता.
1: So you are saying that this higher voter turnout, and it is quite massive. You look at the increase, from 63 it's gone to 90 in Belghata. From 67 it has gone to 92 in Entali. From 60 it has gone to 86.58 in Rash Bihari.
0: Yeah.
1: All of this you are saying is the Hindu voter mobilizing.
2: Mobilize.
1: But how can you be sure कि ये सारे hold a second. How can you be sure कि ये सारे हिंदू वोटर बीजेपी के लिए वोट कर रहे हैं? हो सकता है कुछ टीएमसी के लिए भी वोट
2: अभी
1: कर रहे हैं?
2: अभी
1: क्या कहता, मैं तो हिंदू वोट करते हैं ना.
2: मैं उस पे भी जाता. कल आपके यहाँ एक थे जो सर्वे करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई लोगों में एक बड़ा डर था. 10 लोगों में 7 लोग नहीं बोला कि भाई हम किसको पोल करें, तो मैं इसलिए सर्वे नहीं दिखाया. किससे डर था, मनोसी से था या उनसे था या पद्मना से था? जो वहां की सरकार थी उससे डर था ना. और वो सरकार से डर के नहीं बोल रहे तो उसको क्या मानेंगे आप? तो मैंने अपने
1: कि वो सरकार के खिलाफ वोट कर रहे हैं.
2: वो सरकार के खिलाफ कर रहे तभी नहीं डर रहे हैं, क्यों डरेंगे?
1: तो हमें ये एक्सट्रपोलेट कर लेना चाहिए कि अब जो इंक्रीज टर्नआउट है, एक वो हिंदुओं का है
2: जी.
1: और दूसरा दैट ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू गो एंड वोट अगेंस्ट द पीपल हु आर स्केयरिंग देम, व्हिच इज एंटी टीएमसी वोट पार्ट.
2: उस समय भी एक 21 में, माने 2021 में 21 में भी आप देखेंगे कि मुसलमानों का जो पोल हुआ था 82-83% 80 या उसके बीच में हुआ था. कहीं पे 86 गया था, जैसे मिर्जापुर आप चले जाइए, मुर्शिदाबाद चले जाइए, यहाँ पे वो थोड़ा सा पोल अधिक हुआ था. लेकिन हर एरिया में जब आप जाएंगे सीट वाइज तो आप देखेंगे कि कम से कम 80% मुसलमानों ने वोट दिया था. ये जो परसेंटेज था उसमें से 80% मुसलमानों का पोल का था.
1: ओके, सो वी आर सजेस्टिंग दैट दीस सीट्स इन द हार्ट ऑफ कोलकाता, द प्रेसिडेंसी रीजन, आर वेरी लाइकली टू फ्लिप. दीज आर 6 सीट्स फ्रॉम कोलकाता, टोटल ऑफ 11 सीट्स. एंड मनोज सिंह इज सेइंग दैट एज मेनी एज 6 to 7 इन कोलकाता कैन नाउ गो to the BJP. Tushar Gupta wants to add something, and Kanchan da, this really is going to be the heart of West Bengal, the intelligentsia. But before you answer that, Tushar, you wanted to make a point.
3: मनोज जी ने दो बातें कही, एक टर्नआउट के बारे में, एक मार्जिन के बारे में. अगर मैं अब इलेक्टर नंबर्स 2026 के देखो और उनको 2021 से उनका कंपैरिजन करूं, ये मार्जिन का अब टीएमसी को कोई फायदा नहीं होगा. चौरंगी में जहां बात कर रही हैं, जो एसआई डिलीशंस है, दे आर 200% ऑफ द टीएमसी विक्ट्री मार्जिन फ्रॉम 2021. पर कलकत्ता में मैं टर्नआउट को ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं मानूंगा, बिकॉज द ऑर्गेनिक सर्ज इन कोलकाता इज एक्चुअली वेरी लेस. इट्स मोस्टली द लो डिनोमिनेटर इफेक्ट दैट केम इनटू प्ले इन द सेकंड फेज ऑफ द इलेक्शन. इन द फर्स्ट फेज इट वाज इवन स्टीवन, बट इन द सेकंड फेज इट्स मोर ऑफ द लो डिनोमिनेटर इफेक्ट. बट आई ऑल्सो बिलीव ऑल दीज 6 सीट्स विल फ्लिप टूवर्ड्स द बीजेपी. इट्स almost a guarantee of sorts that if BJP is winning this election, the six MLAs of the BJP of the 148 bare minimum will come from here.
1: Let me ask you this, Kanchanda, that this is the section of people, the so-called intelligentsia, who would think of the BJP as basket of deplorables. What are the factors that possibly could motivate them or catalyze them in the direction of the BJP, if we are to believe this analysis?
4: I'm not being sarky, but I think there's a logical discrepancy in your argument. I will tell you why. Because, you know, it always surprises me how much everybody else in the country knows about the so-called Bangali Bhadralok than the Bhadralok himself. So, you know, it's a very broad brush thing that the Bhadralok does not like the BJP. Bhadralok turns up his nose to the BJP, etc., etc. Now, you know something, if the BJP were to win this election in West Bengal, it would be a homecoming for the BJP for the simple reason. Everybody talks of the Hindi heartland, but the real crucible of Hindutva thought process, of Hindutva as a concept, as a way of life, etc., begins in West Bengal. And in the 18th century, in the 19th century, in the 20th century, it was the Bhadralok Samaj of Bengal which was actively engaged in this process, whether it was the Hindu Mela, whether it was the Renaissance, whether it was the conceptualization of Bharat Mata. Who did it? The Bhadralok did it.
1: Then why aren't they voting for the BJP?
4: Vande Mataram was composed by the most ideal of ideal Bhadralok, that is Bunkim Babu. So how do you say that the Bhadralok does not like the BJP? The Hindu Mahasabha used to regularly win seats in West Bengal. You had Shyama Prasad Mukherjee from West Bengal. So there is nothing called one Bhadralok class, number
1: correct.
4: One.
1: Correct. So
4: number
1: there are a lot of commonalities, but why isn't there a vote then? Why didn't they vote for the BJP in all these elections?
4: How do you know? If I were to argue that the BJP got, say, I'm just taking a ballpark figure, 100 votes in 2021, what makes you think that 30 or 40 of those votes did not come from the quote-unquote Bhadralok class? You can't assume these things. Have you done a booth-by-booth survey?
1: No, but they did not win
4: because
1: those
4: in Rash Bihari,
1: I haven't checked
4: instance,
1: every booth.
4: For instance, in Rash
1: but
4: Bihari.
1: But in the overall seat,
4: instance,
1: they did not
4: in
1: win.
4: Rash Bihari, in Rash Bihari, look at the low level of voting in all previous elections and look at the high level of voting in this election. I'm talking in comparative numbers.
1: Okay.
4: Now, which means the super Bhadralok class of Rash Bihari came out of their magnificent homes, old Calcutta homes, and actually stood in a queue and voted, which they were not doing all these years. So how can you say that they were voting against the BJP?
1: Okay, fair. So it's an important factor that if they haven't voted this far, it doesn't show unacceptability. Maybe there were other issues at play there, like fear not turning up. Tushar Gupta, only 20 seconds, please, because I really must talk about the next set of seats.
3: You know, the Bengali Bhadralok may have voted for the BJP, but it was never this vocal about its voting preferences. It was always a divided house, most of them going for Mamata Banerjee because of Bengali identity used to take over, a few of them going for the BJP because development was paramount. This time, what was different to at least people who are not from the Bhadralok is the vocal, the aggressive vocalization of that, this is what we want the BJP. That is what has changed.
1: All right, they turned up, one, because there was no fear factor, there was mobilization, and they were vocalizing what they felt, but may not have translated into votes on polling day. We've looked at Kolkata, 6 to 7 seats, it is being predicted, out of 11 could go the BJP's way this time. What about Hooghly? In Hooghly, let's take a look at the seats, Arambag, Champdani, Srirampur, Shingur, Tarakeshwar, and Uttarpada. Now imagine Shingur, a place from where Mamata Banerjee's ascent started, on the name of which she launched a movement, became chief minister. First thoughts. इनमें से कौन सी सीटें बीजेपी जीत सकती है. इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यू हैव आरामबाग विच इज एक्चुअली अ फ्लिप. 2021 बीजेपी वन इट, बट इन 2024 टीएमसी वॉज लीडिंग इन दिस असेंबली सेगमेंट. बट द मार्जिन ऑफ विन इन 2021 फॉर द बीजेपी ऑल्सो वॉज वेरी वेरी स्लेंडर. कुड दिस गो द अदर वे? यू हैड स्पेक्टेक्युलर टर्न आउट हियर एज वेल, 92% एज कंपेयर टू 85, विच मीन्स यू हैव अ 7% इंक्रीज हैपनिंग हियर. एंड दीज अदर सीट्स ऑल्सो इन हुगली डिविजन, इनमें से कौन सी आपको लग रहा है पलट?
2: आरामबाग चले जाइए, सिंगूर में बहुत ज्यादा फाइट है, लेकिन इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि बीजेपी जाएगी. एज बीजेपी को मिल रहा है.
1: क्यों मिल रहा है?
2: इसलिए मिल रहा है कि जो सिंगूर में जो पिछली घटनाएं हुई हैं और लोगों ने लगा है कि वहां पे डेवलपमेंट रुका है इनके कारण, तो उस कारण से लोगों का हुआ. देखिए बंगाल का सबसे बड़ा दुखद घटना क्या है कि वहां पे 60 साल हो गए, वहां पे डबल इंजन की सरकार कभी नहीं रही है, और लोगों को लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार नहीं होने से स्टेट का डेवलपमेंट रुक गया है.
1: तो यहां पे एक्चुअली ब्रेड एंड बटर इश्यूज कि लोगों को नौकरी चाहिए,
2: नौकरी चाहिए,
1: फैक्ट्री चाहिए.
2: 100% आप कलकत्ता में जाएंगे, 50 साल में कुछ नहीं बदला.
1: आपको लगता है कि यहां पे सिंगूर में फाइट है, बीजेपी
2: जीत सकती है? तारकेश्वर में चले जाए, बीजेपी जीत कर आएगी. आप उत्तर पारा में आए, बीजेपी
1: क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्जिन बहुत कम था.
2: नहीं, मार्जिन कम की नहीं, एक सेंटिमेंट जब बनता है ना किसी के लिए, तो जो मार्जिनल सीट होती है वो ऑटोमेटिक उधर से
1: सीट
2: होती है. लेकिन ये
1: पहले कम मार्जिन वाली सीट है, उस तरफ चली जाए.
2: अब ये 18% का है, 14% इंक्रीज किया है वोट ऑफ पोल में, लेकिन ये 18% भारी हो जाएगा उत्तर पारा में. इस बार बीजेपी का जो सेंटिमेंट बना है उस पर भारी पड़ जाए.
1: क्यों सेंटिमेंट बना है?
2: इसलिए बना है, एक हिंदुत्व का मुद्दा आया है, दूसरा आया है कि इस बार हमें खुलकर वोट करना है. मैंने कहा ना कि इस बार भय का एक विज्ञापन आता है कि एक वोट पियो और भय से आगे बढ़ जाओ. तो इस बार लोगों ने कहा कि इस बार अपने भय को तोड़कर हमको पोल करना है.
1: इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट यू हैव गॉट
0: all these seats Padmaja
1: and quite a sizable Dalit population as well. Tarakeshwar I was seeing has got a sizable Dalit population. Shayad Singur mein bhi kafi Dalit kaafi population hai. Tarakeshwar as much as about 30-32% Dalit population. So a lot of the SC seats, and also in our exit poll we found that SC seats, SC vote almost 60-70% is going to the BJP.
2: सिंगूर के बारे में बताना चाहूंगा कि शायद यहाँ पे सबसे ज्यादा 1,500 रुपया जो इन्होंने दिया है वो पाने वाली महिलाएं तीसरे या चौथा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो ये माने विधानसभा है कि जहाँ पे इनको बेनिफिट मिल रहा है. अब 1,500 रुपया पिछले 3 सालों से मिल रहा है, तो उसका बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है टीएमसी को? पद्मना एक जान लीजिए कि जो भी पॉलिसी होता है उसका बेनिफिट एक ही बार लिया जाता है, और ये 3 साल पहले की थी और 2024 में ले चुकी हैं,
1: यानी कि उसकी एक्सपायरी डेट हो गई,
2: एक्सपायरी डेट हो चुकी है. तो अब नेक्स्ट जो उनको दिख रहा है कि वो बीजेपी जो 3,000 का दिया है, तो वहां पे
0: डिफॉल्ट स्टेट ऑफ अजम्पशन
1: बेसिकली इट्स दे दिल मांगे मोर. आपने मुझे 2021 में यू गेव मी 1500 rupees, 2024 I gave you the reward for it. Ab ye dil mange more, which are the seats that
0: give a statistical qualifier to all this. In all of these, if we actually look at the 2000, you've got the leads, right? If you look at the margin, the absolute numbers, okay, it's very interesting. In Uttar Pada in 2024, the lead of Trinamool was reduced to just 5%, Srirampur 4%, Champtani 4%, Singur 9%, again Tarkeshwar only 5%. So as per 2024 leads, all of these seats actually fall very much into the catchment area of BJP now. That's one point. Achha, some trivia. Tarkeshwar, the BJP contestant, is a former Republic Bangla.
1: Shantanu Pan.
0: And it's really hilarious to watch his videos, just say that much. And like he spoke of Dr. Shama Prasad Mukherjee, Uttar Pada is the place where Sri Aurobindo actually made his speech that if Bharat is going to get independence, it is for Sanatana Dharma. Uttar Pada actually does also have as much importance on the Hindutva landscape as Kolkata.
1: Interesting. And despite that, again, has never voted for the BJP.
0: Never. The BJP has never won.
1: Never won. BJP has never won. I have to put that qualifier, thanks to Kanchan Gupta, that it's not like they never voted for the BJP. The BJP has never won from this seat.
0: It's famously called the Uttar Pada speech.
1: You know, and when we're talking about Hindutva, I have to say one more thing, because people keep saying there is no place for Jai Shri Ram in West Bengal. You have got places like Srirampur, which are here. You know, in Purulia, which is a tribal area, you've got an Ayodhya Hill. Purulia is tribal dominated, and yet you see the maximum people, the most devout Hindus, who will go to Ayodhya Hill, who will go to Sitakund there, will be the tribals from Purulia, from Bankura, from Jhargram. So this entire image that is created needn't necessarily be true. on the ground. Tushar Gupta, you want to comment on this? Which are the seats you think? We've already discussed that you've got the low-hanging fruit, Kanchanda, where you've got very small margins. If there is a wave sentiment, they are going to flip. What are the two factors you can think of which could contribute to a wave, as has been discussed?
4: Quickly make a point.
1: Yes, sir, go on.
4: You know Padmaja, I remember telling Shopun this time that he should have contested from Tarakeshwar because it was such a slender margin, yes, by which he lost. He could have easily overcome it without any effort at all. Now, having said that, the other X factor which we are totally ignoring in all our discussions, in 2021, the second wave of COVID had a devastating effect on the way people voted, on whether they at all came out and voted, because of which the kind of chappa voting, that is fake voting, false voting, phantom voting, which happened. We were talking Uttarpara. My father died in Uttarpara during the second wave of COVID. I don't know who got his vote. His name was very much on the voting list, and I have used that excerpt to get to reconfirm my name on the voting list during the UPSIR. But who actually voted on it? Because someone voted. That much we have established. So this kind of racketeering inside the polling booth is not happening this time. Now, the other factor which I wanted to say, because you said the BJP has never won from here, it is also whether the BJP was in a position to win from there as a party, as an organization, as an entity. Because the BJP has taken a certain amount of time to build itself up for a variety of reasons. And the last point which I want to leave you with is that, the whole thing of this Sri Ram controversy, you talk of of Bengali identity, of Bengali culture, of Bengaliness. You pick up any segment of Bengali literature in terms of phase. If you pick up any thing to do with art, with culture, the Ramayana influence, the Mahabharata influence, it is so obvious. Tagore wrote about it. Others wrote about it. There are famous translations of Ramayana and Mahabharata which exist in Bangla and which are used by scholars all over the world. So it is not the Bhadralok class. I don't want to use the opposite of Bhadralok class, but it is, without using that word, it is the opposite of Bhadralok class which has used the cover of Bhadrata to make this great thing that Ram is not a Bengali entity, Ram does not fit into the Bengal identity, that there is something, this whole Bengali exclusivism, it is just unimaginably horrid.
1: You know, if the results go in the direction as is being predicted, it's not about only which party comes to power. I think a lot of beliefs, or rather a lot of myths which have been propagated about the state, will also be busted in the process. I want to now talk about North 24 Parganas, because in phase two, when the polling was taking place, 142 seats, there were a lot of areas which were projected as impenetrable. South 24 Parganas was one. North 24 Parganas has not been impenetrable, but it was projected as difficult. Now it seems that it is far more penetrable than many would let on. Let's take a look at the seats over here. Sandesh Khali, Sukumar Mehto won over here, but BJP had a lead in 2024. Habra, again, the BJP had a lead in 2024, despite the sitting MLA being from the Trinamool Congress. Damdam Uttar is very important because you have a minister, Chandrima Bhattacharya, who's been fielded from here. Panihati, Nirmal Ghosh is the sitting MLA, but you have the mother of the RG Corps victim. Ratna Debnath is the name of the candidate of the BJP. She has been fielded from here. And Nirmal Ghosh's son, a first-timer, has been fielded by the Trinamool Congress. What, again, this has in common is that these are also seats with very, very thin margins. Imagine, 1.9% is the margin of victory for the TMC in 2021. And in 2024, the BJP already managed to lead. Isme se aapko kaun sa lag raha hai? और आप कुछ तो मनोज जी बताइए, कुछ तो डिफिकल्ट होगा बीजेपी के लिए, आप तो सारी सीट दे रहे हैं।
2: सारी सीटें डिफिकल्ट उनके लिए जो है ऊपर का, आप जाइएगा संदेश खाली जो है डिफिकल्ट है, थोड़ा समय लगेगा मुझे लगता है कि इस बार तो मैं उसको नंबर नहीं देना चाहता।
1: And remember the context, because Sandesh Khali had been a very, very emotive issue in the 2024 election. The BJP had even fielded Rekha Patra, who was one of the ladies who complained that she had been raped, she had been sexually assaulted. She was fielded on a BJP ticket and she had lost. Now she has again been fielded, but this time for the assembly election.
0: No, but
1: emotive issue hai.
0: Just to qualify, in 2024 in the parliament election, within the Sandesh Khali assembly segment, she trailed by only 4%. So she does have hope.
1: Oh, okay. Only 4%.
0: Only 4% she trailed by.
2: हाँ वो था, लेकिन मुझे जो दिखा वो मैं बता रहा हूँ। पानीहाटी जो है ये भी टफ है बीजेपी के लिए, वीजपुर जो है ये बीजेपी के लिए ठीक है, नौपारा भी ठीक है बीजेपी के लिए, जबकि 14% का दिख रहा है, लेकिन इस बार का जो सिचुएशन दिख रहा है उसके हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे बीजेपी जीता है। हाँ, ये जीता है दमदम उत्तर।
1: नो, अर्जुन सिंह इज कंटेस्टिंग फ्रॉम नौपारा, हिज सन हैज बीन गिवन भाटपाड़ा।
0: सॉरी
2: दमदम,
1: जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट, बैरकपुर वेरी वेरी यू नो, यू गॉट अ लॉट ऑफ हिंदी स्पीकर्स हु आर लिविंग देयर, जूट मिल्स, very heated clash, a lot of the visuals you would have seen of TMC and BJP fighting each other, attempted violence at the booths, all of that was coming from this Barrackpore area where Noapada is also there. So aapko keh rahe ki ye palat sakti
2: hai, palat sakti damdam jo uttar hai ye bhi BJP ke liye theek thaak hai, Hawda theek hai,
1: kyun wajah kya hai,
2: aap wajah
1: bole minister hai unki, chandra
2: bhai chand hai, maine kya bola ki jab against jab aata hai na to pehle minister se aata hai, जो माहौल बनता है ना वो मिनिस्टर से बनता है, वो लीडर से नहीं बनता है, कि जो विधायक हैं उनके प्रति इनकंबेंसी ज्यादा दिख रहा है, मिनिस्टरों के प्रति इनकंबेंसी ज्यादा दिखता
1: तो
2: है।
1: आपके लॉजिक से तो फिर जो सारे आपके मिनिस्टर्स वाली
2: सारे मिनिस्टर ऐसा थोड़ी होता है,
1: मतलब ज्यादातर मिनिस्टर्स की सीट हारेंगे वहां ज्यादा चांस है,
2: ज्यादा चांसेस वहां पे कि वो हारेंगे।
1: कौन कौन मिनिस्टर्स वीक विकेट पे,
2: अब ये सब निकाल कर अब मैं दे दूंगा, अभी आप जो
1: कल करेंगे ये। स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन टुमारो इवनिंग, बिकॉज वी आर एब्सोल्यूट इलेक्शन नर्ड्स। टुमारो वी विल टेल यू व्हिच मिनिस्टर्स कुड बी इन ट्रबल एंड व्हिच आर द वीआईपी सीट्स टू वॉच आउट फॉर। आखिरी दो सीट्स बताइए।
2: हावड़ा जो है बीजेपी 100% जीतेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। टोलीगंज जो है इसमें मुझे डाउट है कि यहाँ फिर वैसा कोई बदलाव हो रहा है,
1: ये भी तो मिनिस्टर है आरूप बिस्वास।
2: तो मैं तो क्या बोल के सारे मिनिस्टर को तो मैं नहीं हरा रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा कि ये चीजें हैं वहां पे थोड़े से सेफ है, लोगों का ये लग रहा, थोड़ा सा कास्ट कॉम्बिनेशन भी देखेंगी या रीजन वाइज देखेंगी तो थोड़ा सा उनको फेवर कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता, चूंकि सारी ये सब चीजों मिलते हुए जब आगे बढ़ता है तो बहुत सारे ऐसे, जैसे मैंने 161 का बोला है कि बीजेपी वहां पे आ सकती है, तो जब ऊपर की टेली गड़बड़ होती है ना तो वो 20-25 सीट ऊपर भी जा सकती है, तो ऐसे देखना पड़ेगा कि मार्जिनल कौन सी सीट और कौन सिचुएशन के हिसाब से बदल रही है।
1: सो हियर आर द फैक्टर्स टू वॉच आउट फॉर, वेरी थिन मार्जिन ऑफ विन इन 2021 फॉर द तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी मैनेजिंग टू गेट a lead in the 2024 elections in comparison to what the 2021 results were, SIR deletions negating any margin of victory that might have been there in 2021, and most importantly, something that we cannot ignore is that there is a general sentiment, and as Manojji said, that when a general sentiment is against the incumbent or there is an anger and you want to remove a government, then all of these factors get subsumed, they're all swept away, and finally and most importantly, this is an election where the fear factor has gone. So the turnout increases, and that is going to be decisive. Final 30 seconds.
0: Two factors to note in here. Across this entire district, the SIR cut, the average SIR reduction is 15%. So that's one good hope for the BJP. The second one, of the two seats, only Hawda and Toliganj in 2024 had a double-digit percentage lead for the BJP, 10 and 11% for the Trinamool, 10 and 11% respectively. In all these other seats, the lead shrunk to 3%, 4%, 5%. So there is hope for the BJP in 2024.
2: Dusri baat Padmana bata rahe hain ki jo kaha ja raha tha na, ये नॉर्थ 24 परगना के बारे में बता रहे हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं सबसे ज्यादा इसी एरिया में आए हैं, जो वोट करने के लिए आए हैं, जिनको कहा जा रहा था कि भाई इस बार जो डर से आए कि मेरा SIR के
1: माइग्रेंट लेबर जो
2: थे वो ऐसा नहीं था कि वो पोल नहीं किए थे, 2021 में भी पोल हुआ और 2024 में भी पोल हुआ, उन्होंने पोल नहीं किया है, पद्मना का पोल मैंने किया था, इस बार उनके अंदर डर बनाया गया पद्मना को कि भाई आप अभी पोल नहीं करने आएंगे, चूंकि उनको पता था कि सेंट्रल फोर्सेज की इतनी तरह से हो रहा है, तो हम जो छापा, कंचन जी बोल रहे थे कि जो छापा वोट होता है तो उनको लगा कि छापा वोट नहीं होगा तो कंचन जी को बुलाना है, तो उनके अंदर डर पैदा करना है। तो ये एरिया वही है कि जहां पे सादे लोग बाहर से आकर यहां पे पोल किया इस बार।
1: सो द छापा वोट इज गॉन और द गोस्ट वोटर्स हैव बीन वीडेड आउट फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स and people have come in huge numbers to ensure that they continue to remain voters in the state. And it may not necessarily be true that they are only voting in one direction out of fear of their names being deleted in SIR, or they are only Trinamool Congress voters. Like Manojji said, a large number of them have come here in North 24 Parganas as well. The effort was only to try and do a deep dive and tell you what are the factors, what are the key seats, what could be almost the bellwether seats on counting day, because they will tell you the direction that this election is taking. Five factors we've listed before you, and all of them will be illustrated by which way these seats go on the 4th of May. That's as far as Bengal is concerned. Now we will talk about Tamil Nadu and the Vijay factor there. The matrice data for the region-wise and community-wise, issue-wise breakup for Tamil Nadu. What are the issues? And yes, it's more than Vijay. Stay tuned. We are coming back on the other side of a quick break.

0: बोला वोट हो गया चला जाओ और वोट दे ओ जहांगीर खान का आदमी इतना भी चल बोला वोट दे जाएगा तो तुमको काट के मार देगा ऐसे बोल दिया। हाँ वो मारा अभी तक वो दो दिन से ऐसे घर में जाके वो 20 आदमी जाके हिंदू लोगों को घर में बाल बच्चा को बोला काट के फेंक देगा ऐसे बोला हम लोग का हमारे हिंदूदेर माचे टीएमसी लोकेरा हमारे प्रधान इजराइल चौकदार जहांगीर खाने लोग
1: आपका वोट कहाँ है
0: वो हम लोग का 144 नंबर 9 नंबर
1: आज वोटिंग हो रहा है रिपोलिंग
0: नहीं वोटिंग तो हो गया
1: रिपोलिंग से कोई कनेक्शन
0: है रिपोलिंग चाहिए हम लोग रिपोलिंग हम लोग रिपोलिंग चाहिए था बोला था अभी तक रिपोल नहीं हुआ
1: ठीक है वो तो इलेक्शन कमीशन का
0: बोला था कल से कर रहा हूँ
1: लेकिन आज क्या हुआ
0: आज तो वही धरना दे रहा है उसको अरेस्ट करने के लिए अभी तक अरेस्ट नहीं किया वही इजराइल को वो अभी खूने हम घूम रहा है ऐसे ही घूम रहा है
1: कौन
0: वो इजराइल इजराइल चौकड़ा खुले हम घूम रहा है बोला हम देख रहा अभी तक अरेस्ट नहीं किया
1: उसने किसी को थ्रेट किया है
0: घर में जाके
2: बहुत
0: फैमिली को जाके मार पीटा
2: हम लोगों का गांव का लोगों को।
1: अच्छा ये क्या लोकेलिटी है ये
2: यहाँ गांव का नाम है हासिम नगर अरे जो ने फलता
1: ये तो आज
2: हम लोगों का यहाँ का दो बूथ है ठीक है एक बूथ के रास्ते पे लोगों को बोला आप लोग वोट हो गया आप लोग घर चले जाओ 1100 वोट है 700 के ज्यादा नहीं हुआ सबको भेज दिया
1: और दूसरे जगह पे
2: हुआ वहाँ लोगों को सीआरपीएफ ज्यादा था इसीलिए हुआ
1: आज यहाँ पे हंगामा क्यों हुआ आप लोग रोड
2: काल को बोला था वो जो इजराइल चौकदार है 12 घंटा के अंदर उसको अरेस्ट करेंगे वो यहाँ पर चाय पीने आया था सुबह और वो जो हम लोग का बंगाल पुलिस है ना वो हम लोग भाई चलो शांतिपूर्ण कर ले ऐसे कर रहे
1: इजराइल यहाँ पे चाय पीने
2: हाँ चाय पीना है और हमारे बंगाल पुलिस है ना
1: सो ऑफ कोर्स द पुलिस नाउ यू कैन सी हियर पुलिस आर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ यू नो इंश्योर दैट देयर इज नो कॉन्फ्रंटेशन व्हाट सीम्स टू What happened is that the TMC strongman seems to have come here on the pretext of obviously having a cup of tea and that seems to have led to some kind of confrontation between people here and that's right. led to this kind of confrontation with a crowd coming out onto the streets. Now this of course is the national highway. It's a narrow road, it's not a very wide road but it connects Diamond Harbour to Kolkata and beyond to the south. So obviously it's a sensitive area and that's why you see of course the police presence here now which is where they've managed to bring it under control but it seems to be a confrontation here that led to this whole flare up. It's largely under control right now, not too much aggression at this point, but the locals here seem pretty upset. आज आप लोगों के साथ कुछ हुआ है क्या या आपका कंप्लेंट ये है कि पिछले दिन चुनाव के दिन जो हुआ था उसका रिपोलिंग होना चाहिए आज कुछ हुआ है क्या
3: कल के जो रिपोर्ट छिलो पुलिस प्रशासन निजे बोले गए थे इजराइल के हमरा 6 घंटा के मध्य धरे नेब धरे निए
1: की का क्यों
3: এই কেন উনি আমাদের গ্রামে অত্যাচার করেছে তার জন্য মহিলা এবং পুরুষ সবাই মহিলাদের থেটো দিয়ে গেছে পুরুষকে মারপিটও করেছে আপনি রক্ত
1: কে মেরেছে किसको पीटा है थोड़ा उनको बुलाइए हां इधर आइए क्या हुआ किसने मारा आपको किसने मारा
4: अभी बंगाल पुलिस ने क्या किया
3: बंगाल पुलिस
1: ने मारा बंगाल
3: पुलिस
1: सब आपको अभी पुलिस
4: ओ अभिषेक शर्मा
3: सब टीएमसी का पुलिस है सब टीएमसी का पुलिस है अरे पुलिस तो हमारे वोट देवे सर पुलिस क्यों लाठी चार्ज करबे তাহলে আমরা যদি কাম তবন্দ রোগে মারি তাহলে তাহলে কি দাঁড়াবে বলুন
1: আর এখানে সকালবেলা কি এসেছিল কি কারণে মানে
3: আমরা এই কারণে এসেছি ইজরাইল কে ধরার কথা ছিল কিন্তু তাকে তোলানি কিন্তু স্যারকে বলাই হয়েছিল যদি না তাকে তোলে তাহলে আমরা কিন্তু অন্য স্টেপ নিতে বাধ্য হবো তাহলে তারা আমাদের অপরাধ রাখি স্যার, আমাদের অপরাধ রাখি। কেন স্যার এসে আমাদের মেরে যাবে ছেলেদের? না স্যার, কেন স্যার ছেলেদের মেসে মেরে যাবে বলুন।
1: So what he's basically saying is that they gathered here demanding the arrest of a Trinamool leader. That didn't happen. That's why they came out here to protest. They say that this particular leader who they're naming was threatening them, and when that didn't happen, they came out on the streets here. The police

0: And yes, the big political story from battleground Bengal. Tensions are flaring in South 24 Parganas, where locals have taken to the streets alleging intimidation as repolling is underway. Protesters claim threats of violence, with some alleging that they have been warned of bloodshed and even driven out of their homes. The accusations are directed at a local TMC panchayat leader, escalating the political temperature in an already sensitive constituency. Security has now been stepped up in the area as authorities move to contain the situation. Meanwhile, the ruling Trinamool Congress is yet to respond and clarify to these specific allegations, even as the BJP is calling it a breakdown of law and order. Many political reactions coming in on that top story. Listen in.
1: আমাদের থ্রেট তো করেছে, মুসলিমরা বাড়ি বাড়ি এসে থ্রেট করছে, হ্যাঁ আমাদের উপর অত্যাচারও করতে চায়, বলছে যে আমাদেরকে বিজেপিতে ভোট দিয়েছো কি না বলো, বিজেপিতে দিলে তাহলে মানে আমাদের বাড়িতে আর থাকতেই দেবে না, বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিয়ে আসছে, বাড়িতে গিয়ে মুসলিমরা হিন্দুদের বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিচ্ছে, তাও আবার সেটা হচ্ছে ইসরাফিল চকদার, আমাদের দু নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, সে গিয়ে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে হিন্দুদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে থ্রেট দিচ্ছে। হ্যাঁ কিন্তু আমরা হিন্দুরা কেন তার থ্রেটটা নেব? আমরা তো মেয়েরা নিরাপত্তা চাইছি, তাহলে নিরাপত্তা আমরা পাচ্ছি না কেন?
2: যদি জিতে টিএমসি যদি জিতে এখানটায় বাচ্চা বুড়োকে পৌঁছাবে, পৌঁছাবে বলেছে আমাদের, আমরা কি আজাদে রইলাম?
3: বেঙ্গল পুলিশরা সকাল থেকে আমরা আছি ইসরাফিলকে ধরার জন্য, ইসরাফিল বাড়ি বাড়ি আগুন লাগিয়ে দিবে, বাড়ি বাড়ি আগুন লাগিয়ে দিবে বলেছে, আর বলেছে রক্তপাত করে দিব 4 তারিখে। আমরা জিটি আইতর মধ্যে আসি ইসরাফিল
4: টিএমসি নে বলা,
3: হ্যাঁ টিএমসি কে ওই ইসরাফিল চকদার বলেছে, আর ওরা আমরা এইছি এই নিয়মাংশ করতে মুষ্টিকে ধরো কেন এরম বলবে।
5: क्या हुआ था, आपने क्या बताया उनको सेंट्रल फोर्सेस के जो आए थे?
6: हमको कल सुबह में मारा, सबको,
5: आपको भी
6: आपको मारा, देखो कान में,
5: हाँ, आपका कान फूला हुआ है ऑब्वियसली। आई कैन आस्क माय कैमरा पर्सन टू ज़ूम इन, ही आल्सो हैज अ स्कट हियर, ऑब्वियसली ही इज बीन हिट हियर। किसने मारा ये?
6: ये बड़का प्रधान है, प्रधान इसराबिल चकदार है।
5: इसराबिल,
6: इसराबिल चकदार
5: कौन से दल के नेता है?
6: ये टीएमसी के दल का नेता है।
5: क्या बोल रहे हैं आपको?
6: सर हम कुछ टीएमसी वगैरह बोल, बीजेपी वगैरह पहले करता थे, बीजेपी आप कोई वगैरह मैंने करता नहीं, ठीक है?
5: ये तो आपका अपना है, कौन
6: सा? कल सुबह में आया, कल सुबह में हम दुकान में काम कर रहा था, ठीक है, वो आकर टीएमसी हमको मारा, ठीक है, हमको बोला 5 साल के लिए दुकान बंद करने के, बोला
5: क्यों
6: पता नहीं।
5: आपको भी मारा है?
7: हाँ हमको मारा है, यहाँ पर मारा है, देखिए इधर है, हम छेले के आने का आना आता है, खेले के आने आने का आता है, तो यहाँ पर 20-30 आदमी था, ठीक है, हमको बोला है तुम किस पर वोट दिया, हम 3 नंबर बोला है, इसलिए घापा घाप दे रहा, ठीक है, तो हम कोई पार्टी फाटी करते नहीं, ठीक है, हमारा तो मर्जी है, हम देता है ना,
5: बिल्कुल आपका मर्जी से आप वोट देंगे, ये तो हर सिटीजन
7: हम का मर्जी है, देता है, तो इसलिए हमको बहुत मार मारा है, इतना मार मारा है कि other area and Diamond Harbor AC, only 4 places it was found. Mm-hmm. Magra Hat, it was found in 11 ACs, 11 booths. But here, large number of booths are there. That is why the ECI has to take a decision based on the totality of the situation.
0: My colleague Saurabh is joining me live from the clash site. Saurabh, first and foremost, tell us about what actually triggered the clashes between the TMC and the BJP. As we see on our screens, security has been amped up in the area.
8: Well, the reason that we're getting to understand from speaking to the locals who are here is that at some point a local TMC leader at the panchayat level came and threatened certain members of the Hindu community here, asking if they had voted for TMC or not, and if they hadn't, then they would have to leave the village or that their homes would be burnt to the ground. The women told us that they had received rape threats and death threats in quite graphic detail, which of course I wouldn't want to share beyond what they said. Now obviously this is a serious situation, that's why they were out on the streets is what they say, they were protesting against that. We're yet to hear from Trinamool on this and what they have to say, but they've been demanding the arrest of a local Trinamool leader. leader. Now, of course, it's election time and their tensions are running high. They did block this road, which is a national highway. The police came in. Police also had to resort to lathi charge to clear the highway. And now, of course, the central forces are also here to bring the situation under control and to ensure that the flare-up doesn't happen again. That's the gist of what's happened. Now, why are they demanding this? They've also demanded a repoll. This particular area falls under the Phalta constituency, even though it's not in Phalta itself. And this area, as of course, they're saying that they've been threatened and intimidated during elections. So this is one of the complaints that these locals have. They made it on our cameras, and of course it's for the police to verify those claims and act on those complaints, as far as, you know, the complaints that are

0: even as we speak. The area has been fortified. Authorities have been moved to contain the situation, but the situation, the tense situation, is still prevailing. Meanwhile, the ruling Trinamool Congress is yet to respond to these specific allegations, even as the BJP is calling it a breakdown of law and order in the state. Meanwhile, the West Bengal CEO has claimed that repolling demand will only be met after an assessment. Many political reactions that we're getting in on that top story. Listen in.
1: का नाम है अनिमेश पोड़िया, वो वांटेड हो गया। 4 तारीख के बाद उसको काट देंगे। इस तरह के वर्ड यूज कर, वो वांटेड हो गया, उसको काट कर पीस पीस कर देंगे।
2: टीएमसी के नेता होगा?
1: टीएमसी नेता, उसका नाम वो इसराफिल चौकदार, वो ऐसा बोल रहा है।
2: अभी तक पुलिस प्रशासन या कोई
1: कुछ नहीं कर रहा है, उल्टा पुलिस कुछ लोगों को मार भी दिया है। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए
3: बेंगल पुलिस सकाल दिखे हमारा आछी इसराफिल के धरार जन्य। इसराफिल बारी बारी आगुन लागी दिवे, बारी बारी आगुन लागी दिवे बोले छे, और बोले छे रक्तपात कर दिबो 4 तारीखे। हमरा जीती आयतर मध्ये आसी इसराफिल
2: टीएमसी ने बोला
3: है, टीएमसी के চকদার বলেছে। আর ওরা আমরা এইছি এই মীমাংস করতে, মুষ্টিকে ছাড়ো কেন এরম বলবে।
4: हमारे यहाँ पे जो निर्वाचन हो रहा है, वो होने से ही पहले हम किसी ने वोट, वहाँ पे अनेक मैक्सिमम लोग है जो वोट नहीं दिया, ठीक है। तो उसके बाद भी हमारा घर में घुस के लोगों को धमकियाँ दे रहा है, मार रहा है, काटने को, कुचाने को, लड़कियों को रेप करने को। यहाँ पे पार्टी जो है, यहाँ पे प्रधान जो प्रधान है, वो बोल रहा है कि जहांगीर खान का आदमी जो बोल रहा है कि यहाँ के लड़कियों को रेप करेंगे, मारेंगे, काटेंगे अगर तृणमूल को वोट नहीं दिया तो। हमारा यहाँ पे मैक्सिमम लोग है जो वोट नहीं दिया, फिर भी हम लोगों को टॉर्चर कर रहा है।
5: क्या हुआ था, आपने क्या बताया उनको? सेंट्रल फोर्सेस के जो आए थे
6: हमको कल सुबह में मारा, सबको,
5: आपको भी
6: आपको मारा। देखो कान में,
5: हाँ, जो आपका कान फूला हुआ है ऑब्वियसली। आई कैन आस्क माय कैमरा पर्सन टू ज़ूम इन, ही आल्सो हैज अ स्कट हियर, ऑब्वियसली ही इज बीन हिट हियर। किसने मारा ये?
6: ये बड़का प्रधान है, प्रधान इसराफिल चौकदार है।
5: इसराफिल चौकदार कौन से दल के नेता है?
6: टीएमसी के दल का नेता है।
5: क्या बोल रहे हैं आपको?
6: सर हम कुछ टीएमसी वगैरह बोल, बीजेपी वगैरह पहले करता थे, बीजेपी आप कोई वगैरह मैंने करता नहीं, ठीक है।
5: ये तो आपका अपना है, कौन सी
6: पार्टी? सुबह में आया, कल सुबह में हम दुकान में काम कर रहा था, ठीक है। वो आकर टीएमसी हमको मारा, ठीक है। हमको बोला 5 साल के लिए दुकान बंद करने के बोला।
5: क्यों
6: पता नहीं
5: आपको भी मारा है?
7: हाँ, हमको मारा है, यहाँ पर मारा है, देखिए इधर है। हम छेले के आने का आना आता है, खेले के आने का आता है, तो यहाँ पर 20-30 आदमी था, ठीक है। हमको बोला है तुम किस पर वोट दिया, हम 3 नंबर बोला है, इसलिए घापा घाप दे रहा, ठीक है। तो हम कोई पार्टी फाटी करते नहीं, ठीक है। हमारा तो मर्जी है, हम देता है ना,
5: बिल्कुल आपका मर्जी से आप वोट देंगे, ये तो हर सिटीजन
7: हमको मर्जी है देता है। तो इसलिए हमको बहुत मार मारा है, इतना मार मारा है कि
8: I have no idea about that complaint. I have just come here. After that, no instance of lathi charge has happened. And I have no idea about their complaint. I have to see because everybody is shouting. And I am not the entitled person to speak on behalf of this district. You must consult.
9: What are you saying to the villagers okay, right now? Are
8: we are saying our request to the villagers and everybody present here, please stay away from the national highway. This is connecting several hospitals, including the Diamond Harbour Subdivisional Hospital, which is the lifeline of this subdivision. Please stay away from the... No, everybody, I am not talking about them, I am talking about everybody. Okay, thank you. No further comments from me.
5: They are saying that they were assaulted because they voted a certain way, and some of them, of course, you know, shared their voting preferences.

0: Welcome. You're watching Battleground Bengal. I'm Padmaja Joshi, and here on NDTV, we take our data very, very seriously. So today we are going to talk about the seats that are going to be the decider, the nail-biter seats of West Bengal, on which a lot of political fortunes and futures are going to hinge. In exactly 36 hours from now, when at 8 a.m. on Monday morning, May the 4th, the first batch of postal ballots will be cracked open and the initial leads in tens and hundreds will begin to trickle in. We will, with bated breath, be keen to see the leads, especially the battleground state of Bengal. While some of us will obsess over the BJP's 54-seat fortress in the north, some will be keen to figure out how the 53 seats in the minority belt voted or how Didi did in her Kolkata bastion. There is one parameter that cuts across ages and interests, the VIP seats. Whether you are from Bengal or not, you will be glued to the screen, tracking Bhabanipur, Nandigram, Kolkata Port, Diamond Harbour and many other top contests. And perhaps many of them bellwether seats, which will tell us which way the wind is blowing. And which is why we will not engage in any debates, try and second guess what's going to happen, listen to politicians making their claims, which of course they will. Every side is winning until the EVMs are open. What we will do is talk about data and tell you about these 37 seats, which are going to hold what we call the key to power or the satta ki chabi. Each seat, what are the factors that matter? What is the demography like? What is the SIR deletion like and how it could eventually decide the fate of these seats? So let's start with the first batch, and we are starting with the most keenly watched area, which is Kolkata. And we've picked four seats from Kolkata and one from Purb Midnipur. All of them big names, very important. Bhabanipur, Kolkata Port, Kashipur, Belgachia, Belghata and Nandigram. We'll go through all of them one by one. Bhabanipur, in fact, we have on NDTV discussed in detail. So we'll take very quick word on Bhabanipur and which way it is going. Joining us in this data crunching and analysis is Manoj Singh, the founder and president of Matrees. We also have with us sophologist Jay Mrug and political analyst Tushar Gupta. Jay, quickly, let's start with Bhabanipur. Shubhendu Adhikari versus Mamata Banerjee. It's like the whole world knows about Bhabanipur now. Which way is Bhabanipur going?
1: I think it's a tough contest. 58,000 lead in the last election. Lead narrows down in the Lok Sabha. A near 27% deletion because of SIR. So yeah, I would hold it at tough contest. I wouldn't, you know, wait.
0: Tushar, tough contest or it's decided in your mind?
2: The Bhabanipur seat?
0: Bhabanipur.
2: If BJP is not winning Bhabanipur, then it's not winning the election. It's that simple. If seats like Bhabanipur cannot be won with the updated electoral rolls, the way the improvement happened in the 2024 Lok Sabha, then they're not winning the seats. That's the thing about these seats, Padmaja.
0: Your analysis is BJP is winning and BJP is winning Bhabanipur and the state, right? Because you're saying BJP is winning the state.
2: Yes.
0: So you're saying BJP is winning Bhabanipur. Manoj is also over here. Let's quickly welcome him also onto the set here. Manoj, idhar hi aa jaiye. Abhi aap hi ke numbers hum dekh rahe hain. Bhabanipur, आप कह रहे हैं टफ कॉन्टेस्ट, तुषार गुप्ता कह रहे हैं भवानीपुर जीतनी ही है और बीजेपी जीतेगी।
3: उससे ज्यादा बेहतर है, बेहतर इसलिए है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री खड़ी है और जब भी सरकार और मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में हम कोई बताते हैं, पोल को बताते हैं, तो उसको एज देते हैं। जहाँ की सरकार होगी उसको भी एज देते हैं, चूंकि वो मैनेजमेंट उनका होता है। दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का इतना तो जरूर होता है कि एकदम चेंज होते हुए नहीं दिख रहा है तो उसको एज दिया जाता है कि भाई मुख्यमंत्री तो
0: 58,000 के मार्जिन से पिछली बार जीती थी और अब आप कह रही हैं कि बीजेपी,
3: लेकिन आप पार्लियामेंट में 8,000 वहां जो था मार्जिन उसको क्यों नहीं आप काउंट कर रहे हैं?
0: ठीक है, तो जो 58,000 का मार्जिन था बायपोल में 2021 इन द लोकसभा इलेक्शन, इट वेंट डाउन, दैट मार्जिन वेंट टू ओनली 8,000. सो दिस इज नॉट अ सिटर, इट्स अ टफ कॉन्टेस्ट. तुषार गुप्ता डिसएग्रीज, ही सेज बीजेपी इज विनिंग इट. कोलकाता पोर्ट, राकेश सिंह वर्सेज फिराद हकीम, द मैन हु इज thought to be perhaps as powerful as the chief minister, her left-hand man. She calls him her brother, Firhad or Bobby Hakim. Rakesh Singh versus Firhad Hakim, and you are giving it to the TMC. Why are you giving it to the TMC?
3: टीएमसी को दे रहे हैं, एक मिनिस्टर भी हैं वहाँ पे. दूसरी बात है कि कलकत्ता में जो पिछली बार पूरी तरह से स्विंग कर चुकी थी टीएमसी, और वहाँ पे जो सात सीटें, मुझे छः और सात सीटें जो बीजेपी के दिख रही है उसमें से राकेश सिंह का नहीं दिख रहा है. वहाँ पे काफी हुआ है, पोल भी बेहतर हुआ है.
0: और राकेश सिंह पहली बार लड़ रहे हैं.
1: नहीं, राकेश सिंह इज अ 2016 कांग्रेस कैंडिडेट.
3: कांग्रेस
1: बीजेपी ऑल्सो ट्राइड अ लोकल को ऑप्शन.
0: Okay, and Rakesh Singh, by the way, is just out on bail. There was a lot of controversy about how somebody with a criminal past is being fielded by the BJP. But thoda sa, he's known as a bit of a strong man. Thode se ye bhi kafi dabang kisam ke aadmi jaane jaate.
3: Dekhiye, main ek cheez bata deta rahun. Aap chahe kitne bhi dabang ke hain. Dabang mein ek Muslim candidate ko mana gaya. Musalmanon mein jab candidate ka selection hota hai, to ye dekha jata hai ki uska us samaj mein kitni dabangai hai. Ya wahan pe us area mein kitni dabangai hai. हिंदू का जब सिलेक्शन होता है तो ऐसा बिहार और उत्तर प्रदेश में ऐसा होता था कि भाई ये बहुत बड़े क्रिमिनल टाइप के हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता था. वहां पर वो चीजें राकेश सिंह का नहीं दिख रहा है. मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर टीएमसी का
0: दबंग हैज अ बिट ऑफ अ स्ट्रांग मैन इमेज. बट हियर अ कंस्टिट्यूएंसी तुषार गुप्ता विद अ 40% मुस्लिम पॉपुलेशन 40% मुस्लिम पॉपुलेशन गोइंग टू द टीएमसी. यू अग्री?
2: That is where the TMC gets an edge because of the population, 40% Muslim population. That is the only reason the TMC gets an edge, because otherwise the BJP's vote share has also not considerably improved in the 2024 elections. But the SIR deletions here are actually greater than the winning margin of 2021. So we also have to take into account. But again, I would agree here. TMC gets an edge purely and purely because it's a 40% Muslim population assembly and they are going to lock, stock and barrel rally behind the TMC.
0: Okay, now let's talk about Kashipur Belgachia, and this is in North Kolkata. I think Kashipur Belgachia, North Kolkata. Ritesh Tiwari versus Atin Ghosh in this particular seat, and this also has been given to the TMC. Kashipur Belgachia, aap kyun de rahe hain TMC ko?
3: अब देखिए, क्या ये तीन सीट आप चले जाइए कोलकाता का, तीनों का, कोलकाता पोर्ट चला जाइए, काशीपुर चले जाइए और ये तीनों सीट. ये तीनों सीट है जहां पे मार्जिनल एज मिल रहा है. ये सीटें बदल विधा
0: टीएमसी
3: को मिला, लेकिन ये तीनों सीटें बदलने की संभावना है.
0: मतलब बीजेपी इनमें जीत सकती
3: है. सकती है.
0: तो वो आप कह रहे हैं कि ट्रेंड इसमें आपने थोड़ा सा बड़ा यू नो लार्ज हार्टेडनेस में आपने दिखा दिया टीएमसी को.
1: क्वालिफाई दैट स्टेटमेंट, बीजेपी जीत सकती है. देयर इज एन इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट. इन 2024 द मार्जिन with which the BJP lost shrunk to just 5%. That's point number one. Point number two, it does have a lot of North Indian voters also, Kashipur Belgachia. A third important point, this is exactly the constituency in which the RG Kar Medical College is also located.
0: Oh, okay. तो फिर सेंटिमेंट होगा यहाँ.
3: हाँ, तो इसीलिए कर रहे हैं. देखिए अभी एज, देखिए क्या होता है कि जब हम लोग सर्वे करते हैं तो दो तरह से करते हैं, क्वालिटेटिव भी करते हैं, क्वांटिटेटिव भी करते हैं. दोनों को जब हम मर्ज करते हैं तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है. उसके बाद हम लोग कास्ट का भी देखते हैं, पोल का नेचर देखते हैं, कुछ दिन पोल किस तरह का हुआ. तो ये सब मिलाने के बाद लगा कि नहीं, टीएमसी को एज मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होगा.
0: ओके, सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट दिस हैज अ लार्ज नंबर ऑफ तुषार गुप्ता पीपल हु आर बंगाली स्पीकिंग. And organizationally, the Trinamool Congress is strong in Kashipur Belgachia. Who do you think looks ahead here?
2: Look, the TMC won this seat by a margin of 35,000 votes in 2021. The SIR deletions amount to 58. That's point number one. Point number two, yes, the TMC organizational skills might be very good in this seat, but the BJP upped its vote share by 10 percentage points between 2021 and 2024. So clearly the BJP is also doing something right. And I think someone mentioned that the RG Kaur Hospital is also located within this assembly boundary. So that will be also weighing on the minds of the people there. So I would give this seat to the BJP. To think that a 10 percentage point jump and the entire winning margin being wiped out and the whole anti-incumbency, because RG Kaur is a huge case across Bengal amongst the women. And if it's not going to reflect here, where else would it reflect?
0: And also, yahan par jo Ritesh Tiwari ka candidature hai, kya ye bhi inka Hindi speaker ka background hai?
1: Kyunki mere khayal se yahan the city which has a lot of the old jute mills, a lot of the old factories and workshops. So it did have a lot of the old labor from other states. Ye seat mein.
0: Which is why you've got Ritesh Tiwari, whose background is ki ye Hindi speaker hai. Matlab Hindi speaking Bengali hai. Aur yahan par kafi star power, because yahan pe, if I'm not mistaken, is the place jahan Manoj Tiwari, aapke Gorakhpur ke sansad hai, whose name I keep forgetting.
1: Ravi Kishan. In this entire belt.
0: Exactly. Ravi Kishan, Manoj.
3: करने गए थे
0: पवन सिंह को यहाँ पे आरजेडी ने भेजा था प्रचार करने के लिए. सो इंटरेस्टिंग, बट यू आर स्टिल गिविंग द लीड टू द टीएमसी. बट द बीजेपी कैन मेक गेन्स बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफी ऑफ दिस एरिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सीट, बेलघाटा. हियर यू हैव कुणाल घोष. यू हैव सीन हिम ऑफ लेट, you know, that that strong room where all the EVMs were placed. Kunal Ghosh is the candidate here versus Partha Chaudhary. here also you're giving it to the TMC. Reason?
3: कैंडिडेट उनके बेहतर हैं, दबंग है, काफी दिनों से वहां काम कर रहे हैं, तो इसलिए उस चीज को देना चाहिए कि प्रथम चौधरी को देना चाहिए। दूसरी बात है कि ये वो एरिया है जहां पे पहले से भी ममता का पकड़ रहा हुआ है और पिछला मार्जिन भी काफी अच्छा है, लगभग
1: 65% ऑफ द वोट्स इज द लास्ट टाइम मार्जिन। सो देयरफॉर दिस हैज टू मोर ऑर लेस रिमेन अ टीएमसी स्ट्रॉन्गहोल्ड।
0: ओके, सो दिस इज अ टीएमसी स्ट्रॉन्गहोल्ड, सीम्स फेवरेबल टू देम। तुषार, एनी अदर थॉट्स अबाउट दिस प्लेस? कुणाल घोष प्रोमिनेंट फेस, दबंग इमेज है, मार्जिन बहुत अच्छा था। व्हाट डिड द एसआईआर डू टू दिस सीट?
2: द विनिंग मार्जिन हैज बीन ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट बाय द एसआईआर, ऑलमोस्ट, एंड दे हैड अ 65% वोट शेयर इन 2021। सो यस, इवन विद दैट मार्जिन बीइंग वाइप्ड आउट, द टीएमसी विल लाइक टू स्टार्ट एज अ फेवरेट, बट इन माय ओपिनियन दिस सीट विल बी टू क्लोज टू कॉल। आई वुडंट जस्ट गिव इट अवे टू द टीएमसी एट दिस पॉइंट।
0: इंटरेस्टिंग, सो वी ऑलरेडी हैव स्पोकन ऑफ 4 की सीट्स आउट ऑफ 11 इन कोलकाता, and at least 4 of them are seeming, at least 3 of them are seeming a tough contest. It's only in Belghatta where we are giving the TMC an edge. Tushar disagrees even there. Why? Because of the SIR factor. Now let's shift our focus to Nandigram. In Purb Midnipur, this is where Shubhendu Adhikari is the sitting MLA. Pavitra Kar, who used to be earlier his aide, has been fielded. But you're giving it to the BJP. Aapko lag nahi raha hai ye jo ek Vibhishan ko TMC ne field kiya hai?
3: Dekhiye, pichli baar kya tha ki Mamata ladi thi, unka margin kam tha, ek bada thi. To usme chunav karne mein wahan ke logon ko thodi parshani hui. Lekin jaise ek prayog kiya jata hai, इनके क्षेत्र में किया गया था, उत्तर प्रदेश में हुआ था कि भाई हम अपने छोटे लीडर को भी लेकर यहाँ लड़ाकर देखेंगे तो सिंपैथी मिलेगा, कैडर जुट जाएगा। सिर्फ टीएमसी उतना ही किया है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को लग रहा है कि मैं मुख्यमंत्री के चुनने को जा रहा हूँ।
0: हाँ, क्योंकि
3: एक तरफा वोट जाए,
0: क्योंकि नंदीग्राम में फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर नंदीग्राम इज इन टू पार्ट्स, नंदीग्राम ए एंड नंदीग्राम बी, और नंदीग्राम 1 नंदीग्राम 2 समथिंग लाइक दैट, एंड 1 इज हिंदू

0: मेजोरिटी, वन इज मुस्लिम मेजोरिटी. मुस्लिम मेजोरिटी वोट्स टीएमसी को नहीं आएंगे, पवित्र कार को नहीं आएंगे.
1: उसमें से देखिए, जब सीएम का चुनने का बात हो तो लोग ज्यादा उसके तरफ झुकाव होता है, लोग खुल कर वोट करते हैं. पिछली बार उस जगह के लोग नंदीग्राम को लग रहा है कि इस बार मैं मुख्यमंत्री को चुनने जा रहा हूँ. बार बार उसमें वहां पे जो हम लोग गए थे उस पे बात भी हो रही थी कि भाई ये तो भवानीपुर से भी लड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ हमें रिजाइन करके कहे कि नहीं, वो तो सिर्फ गए हैं ममता जी को हराने के लिए, ये मुख्यमंत्री भी रहेंगे तो नंदीग्राम से ही रहेंगे. ये सोचती
0: मोर प्रेशर ऑन सुवेंदु अधिकारी, नाउ ही कांट लीव नंदीग्राम इवन इफ ही हैपेंस टू विन बोथ द सीट्स. व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस, जय नंदीग्राम?
2: आई डू एक्सपेक्ट हिम दैट एज द एलओपी नाउ हैविंग एनीवेज वन लास्ट टाइम, ही वुड एक्चुअली रीइंफोर्स द विक्ट्री. So I actually expect him to win by a bigger margin.
0: By a bigger margin. Tushar Gupta, what's the story on SIR here?
3: No. SIR or not SIR.
0: And again,
3: SIR,
0: I reiterate, because we keep saying that demography is going to be deciding, but you have a decent number of Muslims here. You have got, again, somebody who was with Shubhendu Adhikari in the TMC, knows, you know, his actually is healed. You don't think that's going to be a factor at all?
3: So you see Kolkata put there, the deletions there were 70,000. In Nandigram, it's 7,000, roughly 7,000. So SIR is not a factor there. But if Suvendu Adhikari is indeed heading to become the next chief minister of West Bengal, possibly Nandigram will see even a bigger BJP victory than it saw last time. It won't be a narrow victory, unlike 2021.
0: Okay, now let's take a look at the next set of seats. And this time we are talking about the seats which have got a lot of headlines. The first seat we're talking about there is Sandesh Kari. And this we are talking about North 24 Parganas. North 24 Parganas, we have picked up 7 seats here. North 24 Parganas is going to be very crucial for the BJP to be able to crack it. Manoj ji, abhi kitni seats hain North 24 Parganas mein aur kitni BJP, kitni TMC ke paas hai?
1: Dekhiye, pichli bar ka jo hai, aakda jo tha hamare paas, करीब करीब 50% का था. 65 सीटें दोनों शायद मिलाकर हो रही है ना, 24 परगना का दोनों का.
0: और उसमें से 24 परगनास टुगेदर हैव 65.
1: हाँ, 65%. उसमें से बीजेपी का जो सीटें थी वो करीब 6 या 7 सीटें थी, लेकिन इस बार वो सीटें बढ़ते हुए आपको 20 के ऊपर जा रही हैं. यही एरिया है जहां पे टीएमसी का
0: नॉर्थ एंड साउथ में मिला के उनकी सिर्फ 6 सीटें थी. आप कह रहे हैं अब वो 20 पे जा रही है. आई एम अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ दीज विल बी फ्रॉम नॉर्थ 24, बिकॉज साउथ 24 इज अगेन वेरी वेरी टफ फॉर द बीजेपी. अगेन द सिंपल रीजन, डेमोग्राफी.
1: 65 सीटें थी, 65 सीटें हुई थी, जिसमें से इस बार हाफ तक भी बीजेपी चले जाए, मैं उसको सुधार कर रहा हूं, चूंकि मैं उस समय बोला था ये 20 से ऊपर सीटें जाएंगी यहां पे बीजेपी की, ये दोनों
0: और ज्यादा गेन्स होंगे नॉर्थ 24 परगनास में. सो नाउ लेट्स लुक एट द इंडिविजुअल सीट्स, एंड दिस बाय द वे इज आल्सो एन एरिया व्हिच हैज गॉट अ पॉपुलेशन ऑफ द सो कॉल्ड हिंदी भाषीज. अगेन इट हैज दैट बैरकपोर एरिया वेर यू हैव गॉट द जूट मिल्स, यू हैव गॉट द ओल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट, अ लॉट ऑफ पीपल हु केम फ्रॉम द आउटसाइड एंड सेटल्ड हियर, एंड प्लस यू हैव गॉट अ लिटिल बिट ऑफ मटुआ वोटर्स एज वेल. मटुआ
1: वोटर्स, बात बता दूं कि ये वो एरिया है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि भर भर के बाहर से लोग जा रहे वोट करने, तो उसमें सबसे ज्यादा कहीं के लोग आए थे, तो यही दो परगना है जहां पे लोग बाहर से पोल करने जाए थे, यानी कि यहां से मजदूर वहां पे ज्यादा गए थे और वो आ रहे थे फिर वापस पोल करने.
0: इंटरेस्टिंग. सो द माइग्रेंट वर्कर, ऑल दोस वीडियोस यू सी पीपल कमिंग इन ट्रेन्स वॉकिंग बैक, ऑल्सो कमिंग बैक टू नॉट 24 परगनास. हाउ डज इट अफेक्ट द टर्न आउट और द रिजल्ट ऑफ द सीट?

0: एंग्री विद पी चिदम्बरम वंस ही फेमसली टोल्ड पी चिदम्बरम कि आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारी पार्टी को, एंड नाउ ही हैज सेड कि जब तक मैं ममता बनर्जी को हटा नहीं दूंगा तब तक मैं अपने सर पे बाल नहीं उगने दूंगा.
1: बैरकपुर इज गोइंग टू द बीजेपी, राइट?
0: दैट्स व्हाट मनोज सेड.
2: इट्स वेरी लॉजिकल बिकॉज़ इन 24 द मार्जिन श्रंक टू जस्ट 2%.
0: Okay.
2: So it's very logical if it can flip now.
0: पर क्या कौस्तुभ बागची strong candidate हैं? कांग्रेस से आए हुए हैं.
3: हाँ हाँ ठीक है, अच्छे candidate है, जीतते हुए दिख रहा है. और इस बार यहाँ पे फिर मैं बता रहा हूँ कि पोल को ध्यान रखिए कि पिछला पोल और इस पोल में क्या हुआ है. और आप देखेंगे कि
0: क्या हुआ है?
3: काफी हद तक तो वहाँ पे पोलिंग बढ़ा है. तो उसका बेनिफिट जो है ना, देखिए लोग बार बार ये कहते हैं कि भाई जो पोल इस बार बढ़ा है उससे टीएमसी को फायदा हो जाएगा. मेरा एकदम उससे अलग है. लोग कह रहे हैं कि यहाँ लोग गए हैं वहां पे, वो पोल किसको किए हैं? वो तो बीटीएमसी को किए होंगे. मैंने कहा कि एकदम किए होंगे, लेकिन वो 21 में भी किए, 24 में भी किए हैं, भले वो ना किए हों, लेकिन मैं पद्मना जी का पोल मैं किया हूं 21 में, 24 में, इस बार पद्मना जी करी.
1: बैरकपुर अनडाउटेडली विल गो टू द बीजेपी. आई एग्री विद सर्स एनालिसिस. ऑल्सो द एसआर डिलीशंस हियर आर टू द ट्यून ऑफ 45,000 वोटर्स. द टीएमसी वन इट बाय जस्ट 9,000 वोट्स लास्ट टाइम.
0: बट अगेन दिस इज अ प्लेस वेयर द हिंदूज आर इन मेजोरिटी. सो ऑफ दिस 45,000 देयर कुड बी
1: ऑफ दोस 7 सीट्स देयर ऑन द बोर्ड. आई थिंक द बीजेपी विल विन 6, एट लीस्ट 6.
0: Okay.
1: And the BJP just won one last time. They'll win 6 this time. All because of that one seat, which is Basihar Dakshin, which has a 42% Muslim population. That won't be won by the BJP. That's my opinion. But the other 6, I think the BJP is taking them home.
0: All right. So Barakpur, we have all agreed, is going to go to the BJP. Bhatpara, I think this is a no-brainer because ye to aapka khud Arjun Singh ka hai, gadi hai. So Bhatpara, mein kuch surprise to nahi ho sakta. Theek hai, Bhatpara to ja hi raha hai. Let's just assume that it is going. Amit Gupta, kaise candidate? If you can quickly talk about Pawan Singh, by the way, is Arjun Singh's son. Yeah. Arjun Singh used to be a member of parliament, then he lost. Now he's contesting from a neighboring seat
2: and
0: on, for the assembly
2: from
0: election.
2: TMC to BJP to TMC to back yes, to BJP.
3: और ऐसे फैन नेता हैं, बड़ा पॉपुलर हैं और स्ट्रॉन्ग
0: और ये अपनी खुद की लोकसभा हार गए. तो let's actually examine this. आप कह रहे हैं कि ये खुद अर्जुन सिंह अपनी लोकसभा हार गए पर बेटा असेंबली जीत जाएगा, क्यों?
3: उनका पकड़ है, देखिए पार्लियामेंट
0: अपनी पकड़ से खुद को क्यों नहीं चला पाए?
3: नहीं, उस समय 6 विधानसभा जीतना होता है. उस पार्लियामेंट में 6 या 7 विधानसभा, 6-7 से जीत कर आना होगा.
0: तो ऐसा नहीं उनका ये जो पार्टी हॉपिंग है उसकी वजह से भी लोगों का गुस्सा था उनसे?
3: ऐसा मुझे उस समय नहीं दिखा था. वैसा तब दिखता कि जब लोगों को लगता कि इनको वोट देकर हम जिताएंगे तो जाकर वहां पर कुछ हो, तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा था कि कांग्रेस का बहुत बड़ा वहां पे स्कोप दिख रहा है. तो उसमें नाराजगी का थी, टीएमसी हारती तो उसकी नाराजगी थी.
0: ठीक है, सो यू हैव गॉट भाटपाड़ा क्वाइट कंफर्टेबल, दमदम नॉर्थ, दमदम एंड बारानगर. फर्स्ट दमदम नॉर्थ स्टेइंग विद द टीएमसी, व्हाई इज दिस? चंद्रमा भट्टाचार्य मिनिस्टर है,
3: वो जीतेंगे. दूसरी बात है कि वहाँ जो मुस्लिम पॉपुलेशन है और ये सब चीजें हैं और यहाँ का उनका गढ़ भी है.
2: प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप जरूर आपका ग्राउंड का अनुभव बताइए. देखिए 2024 में लीड काफी कम होगी थी बीजेपी से पीछे. दूसरी बात, यहाँ पे 2021 में सीपीएम को 21% जितना वोट था. अब गार्गी नंदी राय जैसे जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट है कह रहे हैं कि बहुत सीपीएम का जो भद्र लोग वोट बीजेपी को माइग्रेट करने की सीरियस में है, तो क्या उससे ऐसी सीटों पे असर पड़ सकता है?
3: नहीं, एकदम पड़ सकता है. दूसरी बात है कि दमदम ऐसा है जहाँ पे हिंदी माने बोलने वाला हिंदी
0: बहुत, क्योंकि ये कोलकाता के उसी में है. इट्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ कोलकाता, इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ अ नोएडा.
3: पिछली बार भी वो बीजेपी पे थे और ये निर्णायक वो लोग हैं, लेकिन टीएमसी के जो रहे हुए कैंडिडेट, जो मंत्री भी रहे हुए हैं, काफी हद तक अपनी पकड़ को बनाकर रखे. बहुत खराब इमेज उनका वहां पे नहीं गया.
0: ओके, सो शी इज द हेल्थ मिनिस्टर आई थिंक, चंद्रमा भट्टाचार्य. इट्स एन अर्बन सीट. व्हाट इज द एसआईआर एंड द मार्जिन सिचुएशन ऑन दिस?
1: Damdam North, right?
0: Damdam North, yes.
1: The SI deletions are again more than the margin of victory from last time. The margin of victory last time was 28,000 votes. The SI deletions amount to almost 36,000 votes. And I'm comparing them to the elector numbers of 2021. So the victory margin has been wiped out. And this is again one other seat that the BJP needs to pocket. These all are seats that the BJP was closing in between 2021 and 2024. But if they cannot convert such seats, then getting to 148 becomes really difficult.
0: And you know, which is why we've been saying that North 24 Parganas is going to be critical to any changes that
2: it's
0: we
2: literally
0: see.
2: Literally the bellwether district. Actually.
0: It is the bellwether district. You're absolutely right. If there is one area, I think it would be North 24, and after that, Jangal Mahal. You need to completely convert Jangal Mahal. Get all the seats from the TMC and you need to win in North 24. Then let's talk about Damdam and Baranagar also. Damdam, Baranagar, both staying with the TMC. Do you agree, Jay?
2: Yeah. See, there's some trivia I want to share with viewers. It's, Baranagar is actually the seat of Jyoti Basu. And in 72, it was CPI which defeated the CPM candidate Jyoti Basu there. So, till the last election, the CPM has polled well in Baranagar. I do expect again that if this time a little bit of the CPM vote migrates to the BJP, it can flip it in favor of the BJP. But obviously, he has a better ground report, so I'll trust him than me.
0: यहाँ पे भी आपको लग रहा है
3: TMC का गढ़ रहा शुरू से रहा हुआ है और जहाँ TMC का गढ़ है इस पर एग्रेसिव होकर पोल कर रहे हैं तो मुझे लग रहा कि बस वही एक कारण है कि जो ट्रेडिशनल चलता आ रहा है लेकिन मुकाबला है
0: तुषार
1: अगर गढ़ है तो फिर तो एंटी इनकम्बेंसी की हम बात ही ना करें ना एंटी इनकम्बेंसी
3: बड़ा मार्जिन भी तो है मार्जिन भी तो बड़ा चल रहा है
1: जो किले हैं वो एंटी इनकम्बेंसी में तो गिरते हैं रायबरेली की सीट थी अमेठी की सीट थी 2019 में गढ़ था पर वो गिरा अभी हमें ये भी देखना होगा कि यहाँ SIR का भी एक फैक्टर है आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी बहुत हाई है पूरे स्टेट में तो वो गढ़ों में भी तो दिखेगी ना एक पॉइंट के बाद
3: दिखेगी मार्जिन कम होगा लेकिन मुझे लगता है कि वहां पे TMC आ सकती है ये चीजें दूसरी बात है कि कोई चीजें चेंज होती हैं तो ऐसा नहीं कि सब चेंज हो जाएगा 88 सीटें जो है TMC की जिसपे कहा जाता है कि इनकी मजबूत पकड़ है अब उसमें से भी मुझे घटते हुए दिखे तो फिर TMC तो बहुत नीचे चली
1: बट देन पद्मजा द क्वेश्चन देन रिमेन्स द सेम इफ इन नॉर्थ 24 परगनास कन्वर्जन बिकम्स दिस डिफिकल्ट फॉर द बीजेपी आई हैव एब्सोल्युटली नो एक्सपेक्टेशंस फॉर साउथ 24 परगनास देन वेयर डज दैट मैजिक नंबर ऑफ 148 रियली कम फ्रॉम
0: वेल अपेरेंटली फ्रॉम कोलकाता एंड देन फ्रॉम जंगल महल बताइए आपको कहां लगता है मैजिक फिगर किधर से
3: जंगल महल है और कलकत्ता भी है दोनों जगह है जंगल महल में भी इस बार बहुत अच्छा बीजेपी करेंगे
0: आप तो कह रहे हैं कि मालदा मुर्शिदाबाद में भी गेन कर सकती है ना
3: बीजेपी मालदा मुर्शिदाबाद में मैंने तो कल भी बताया कि
1: कलकत्ता भी भद्रलोक है वो तो ममता बनर्जी का गढ़ है
0: बताइए कि अगर कलकत्ता के भद्रलोक बदल रहे हैं तो फिर ये आपके दमदम के भद्रलोक में क्या प्रॉब्लम है दमदम के भद्रलोक क्यों यहां पर दम भर रहे हैं ममता बनर्जी के लिए
3: स्ट्रांग एरिया है TMC का पहली बात दूसरी बात है कि यहां पे मुस्लिम वोटर भी ज्यादा है उस एरिया से पारा से या दमदम ही है दूसरी बात है कि जो भद्र लोग की आप तो बात करें भद्र लोग हर जगह पलटे यदि भद्र नहीं आते हैं तो ऐसा नहीं था कि 11 की 11 सीट कलकत्ता की सीट हमारे पास आ जाए
0: ओके सो ये दमदम नॉर्थ एंड दमदम जो है इसमें यू आर सेइंग दैट द मुस्लिम पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन सम ऑफ द कोलकाता सीट्स दैट वी हैव सीन भवानीपुर से भी ज्यादा है कितना रफली कितना मुस्लिम पॉपुलेशन होगा यहां
3: मुस्लिम पॉपुलेशन जय जी हमको लग रहा है कि दमदम वाला एरिया जो है उस पे मेरे हिसाब से कितना है 34% से ऊपर है कि कितना है मेरे हिसाब से 34 से ऊपर होना चाहिए
2: हाँ इट इज मोर देन 34
0: ओके मोर देन 30% ओवर हियर बारानगर आल्सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट वी हैव ऑलरेडी सीन कोलकाता एंड नॉट 24 परगनास नाउ वी आर गोइंग टू गो टू द रियली द वाटरलू व्हाट वी आर कॉलिंग द वाटरलू ऑफ द बीजेपी साउथ 24 परगनास डायमंड हार्बर कैनिंग पूर्व बजबज काकद्वीप नदिया वी पिक्ड अप वन सीट ऑफ कालीगंज एंड हावड़ा हावड़ा उत्तर साउथ 24 परगनास वन मोर सीट वी पिक्ड अप भांगर लेट्स दिस टाइम स्टार्ट फ्रॉम डाउन भांगर ये तो ISF के पास ही नौशाद सिद्दीकी यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है
3: कोई चैलेंज
0: लड़ते रहते हैं वो TMC के साथ
3: वो करते रहते
0: उन दोनों का होता रहता है जूतम पैजा TMC यहाँ पे बढ़त नहीं बनाएगी
3: नहीं बढ़ाएगी मेरे हिसाब से
0: TMC एनी चांस
2: में थोड़ा सा पेच है कि बिकॉज ही डिसाइडेड टू फील्ड अ कैंडिडेट इन कैनिंग पूर्वा द TMC डिस्पैच द कैनिंग पूर्वा शोकात मल्ला टू फाइट अगेंस्ट हिम हियर दैट्स द ओनली ट्विस्ट इन द टेल
0: एंड दैट इज द ओनली रीजन दैट यू विल सी मैक्सिमम स्टोरीज ऑफ पीपल बीटिंग ईच अदर अप सो फार एंड गॉड फॉरबिड इवन ऑन काउंटिंग डे इन दीज टू सीट्स भांगर एंड कैनिंग पूर्वा कैनिंग पूर्वा बाय द वे आल्सो हैड द लार्जेस्ट पोलिंग परसेंटेज इन द एंटायर स्टेट यू हैव गॉट अ मैसिव पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स इन बोथ कैनिंग पूर्वा एज वेल एज इन भांगर व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट बोथ ऑफ दीज सीट्स भांगर वी आर गिविंग टू ISF एंड कैनिंग पूर्वा वी आर गिविंग टू TMC
1: No, even if there is a BJP tsunami, I don't think those two seats are coming to the BJP
0: because
1: at
0: I'll
1: any
0: ask
1: cost.
0: You a question. I'll ask you a question, Manuji, because Canning Purba, jitna maine pata kiya tha, yahan par ek local jo hai, gussa hai TMC ke andar. Kyunki mere khayal se Shaukat Maula, jo pehle Canning Purba mein the, unko Bhangar bhej diya gaya hai. To unke log kaafi protest kare the. Aapko nahi lagta hai ki iska kuch bhi factor hone wala hai? And again, here is a place jahan pe sare candidates, barring BJP, Muslims hai.
3: Dekhiye, yahan pe kada mukabla hai, lekin TMC के लोगों के पास अभी ऑप्शन नहीं है कि मैं कांग्रेस को चुनू कि सीपीआई को, वो बीजेपी को चुनने में थोड़ा हिचक करेंगे जो उनके कैडर वोटर हैं, जिसमें मैं बोल रहा हूं कि जिसमें अल्पसंख्यक भी आते हैं और उनके जो कहिए कि गुंडा बदमाश टाइप के पर्वती हैं, वो चेंज नहीं करेंगे।
0: ठीक है, तो दीज आर द टू सेफ सीट्स, वन फॉर आईएसएफ, वन फॉर टीएमसी। लेट्स टेक अ लुक एट द वंस व्हिच हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लिपिंग। नदिया का जल्दी से बात कर लेते हैं बिफोर वी टॉक अबाउट द फ्लिप्स। इन नदिया वी हैव लुक्ड एट कालीगंज, बपन घोष फ्रॉम बीजेपी एंड अलीफा अहमद फ्रॉम टीएमसी। इट विल स्टे विद द टीएमसी, व्हाई इज दिस?
3: देखिए, आप वहां से चल जाइए ऊपर से नीचे से मैं जो इन्होंने कहा कि ये सुनामी वाला है, ऐसे भी हम लोगों ने क्या कहा जाता, पांच में से तीन दे रहे हैं बीजेपी को, दो टफ फाइट में दिखा रहे हैं हम लोग दोनों सीट को। टफ फाइट में जब आप जाती हैं कि मैंने होता है हल्का एज मिलता है तो सीटें बदलते हुए हैं, और मैं कल भी ये बात बोला था कि जब कम मार्जिन वाली सीटी होती है तो जो पार्टी जीतती है ओवरऑल में उसके तरफ वो शिफ्ट होता है, वो बदलता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सीटें नहीं चेंज होगी, मैं इनके बारे में जो अभी बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है।
0: नहीं, तो कालीगंज टफ फाइट है या
3: कालीगंज टफ फाइट है? नहीं,
0: टफ फाइट है,
3: टफ फाइट है।
0: क्यों टफ फाइट है?
3: टफ फाइट इसलिए कि एंटी इनकम्बेंसी तो दिख ही रहा ना, जो बात बार हम लोग कर रहे हैं
0: एंटी इनकम्बेंसी, इसका मेकअप क्या है नदिया में, ये कालीगंज सीट का क्या नेचर है, क्या ये रिजर्व सीट है, क्या ये हिंदू बाहुल सीट है, क्या इसका नेचर?
3: देखिए, यहाँ पे भी मुसलमान ज्यादा है और मेरे हिसाब से ये 54% है,
0: 54%। तो क्या मुकाबला है? तो ऑब्वियसली टीएमसी जीतेगी।
3: नहीं है, मैंने क्या कहा कि टीएमसी का पिछला पोल और अभी के पोल में कितना चेंजेज आता है वो देखना होगा।
0: ओके, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस?
1: दिस इज अ सीट गोइंग टू द टीएमसी। इफ यू आर टेलिंग मी दैट असेंबली इज विद ग्रेटर देन 50% मुस्लिम पॉपुलेशन आर समहाउ गोइंग टू बी वन बाय द बीजेपी, then
0: let me hear one. It is a tough contest.
1: Oh, he is marked it to TMC. Then it's marked, I won't say it's a tough contest. It's going to the TMC.
0: It is TMC. All TMC. Sorry sir, ये नहीं कोई tough contest है, यहाँ ये TMC को हम दे रहे हैं।
2: नहीं, मुझे एक
0: कालीगंज जा रहा है TMC।
3: ये कालीगंज जा रहा, लेकिन जिस तरीके से वहां से आप देखी होंगी लाइन इस बार, महिलाएं जिस तरह से खुल कर आई हिंदू का, तो वोट परसेंटेज घटाएंगे ही घटाएंगे टीएमसी का वहां पे 100%।
1: दमदम की महिलाएं ऐसा क्यों नहीं कर रही हैं? व्हाई इज द बिहेवियर ऑफ द वुमेन देन? इफ द वुमेन आर मेकिंग दिस सीट अ टफ कंपटीशन, देन द वुमेन ऑफ दमदम एंड दमदम नॉर्थ शुड आल्सो मेक इट अ टफ कंपटीशन। दैट यूनिफॉर्मिटी शुड एग्जिस्ट अक्रॉस द स्टेट, इट शुड बी इन सिलेक्टिव सीट्स। My simple point is, in South 24 Parganas, one thing that will work in favor of the TMC is, despite all the differences within the party, the candidate dislike or like, they will lock, stock, barrel rally behind the TMC. Because if they look at, if you're saying that the Hindus look at it as an existential political contest, the Muslims are also thinking, boss, we also need to retain the power. So why should we divide our vote? We need to back the TMC. We need to back Mamata Banerjee.
0: Okay.
1: Why would they act differently?
0: Okay. Final point on Kaliganj.
2: No, I want to come to Baj Baj. Something very interesting. The BJP was a consistent third there. 2021 mein bhi, Manoj ji, BJP 44,000 votes se hari hai.
3: Hari hai bhai.
2: तो अभी ये उम्मीद कहां से पैदा हो रही है बीजेपी के लिए?
3: देखिए, जो छपाई वाला जो था ट्रेंड, इस बार छपाई तो नहीं हुआ है, लोग वोट दिए हैं, कड़ाई हुई है, और जब ये जब छापा वाला वोट कम होता है तो सीटों का जो मार्जिन, जो उनका वोट परसेंटेज जो 54,000 का बता रहे हैं वो कम होगा। जब कम होता है ये चीजें तो ये सीटें टफ फाइट में जा रही हैं। ये उससे तरह से दिखता
2: है, डायरेक्ट इजी नहीं है बीजेपी, टफ फाइट है,
3: बट टफ फाइट में।
2: जस्ट वन थिंग फॉर आवर व्यूअर्स, एक्चुअली दिस प्लेस इज ऑलमोस्ट इन द सुंदरबंस, अ लॉट ऑफ मार्शी लैंड्स, सो पीपल हैड टू वेयर लॉट ऑफ बूट्स एंड गो देयर, द ब्रिटिशर्स, द बूट्स मेड अ बज बज साउंड, सो द प्लेस गॉट द नेम।
1: ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग।
0: ओह, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस?
1: Oh, that's an interesting factoid, I think.
0: But thought because the TMC refuses to budge from here. That's why it's called budge.
2: It's a nice attitude.
0: Yes, go on.
1: No, budge, I think the TMC will...
0: Budge going to TMC. Yeah. All right. Very quickly, so you are saying that this is not changing. Ye keh rahe hain ki TMC...
3: Dusri baat bata rahe hain. Jab bhi hum log ye karte hain...
0: budge ka makeup kya hai? क्या पॉपुलेशन, क्या इनका ब्रेकअप है?
1: इट्स 39% मुस्लिम पॉपुलेशन, अप्रोक्सिमेट
0: 39% मुस्लिम।
3: लेकिन वहां पे इस जो महिलाएं निकल कर आई हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वहां महिलाएं काफी पोल की हैं और 3.5% शायद उस इलेक्शन का विषय, 3.5% महिलाओं का पोल अधिक हुआ है। अभी ये है तो वैसे स्थिति में बीजेपी के लिए काफी अच्छा स्थिति है, चूंकि महिलाएं मुस्लिम महिलाएं हो चाहे मुस्लिम पुरुष हो, पिछले बार वो पोल किए हैं,
0: इस बार मुस्लिम महिला तो बीजेपी को वोट नहीं देंगी।
3: मैं वही बता रहा हूँ,
0: महिलाओं में सिर्फ हिंदू महिलाएं आप कह रही हैं देंगे।
3: मैं वही बात बता रहा हूँ कि पिछली बार मुस्लिम महिलाएं तो उनको वोट की ही की है। तो जो महिलाएं 3-3.5% ऊपर एवब की है जो पिछले के अपेक्षा में, तो वहां पे वो ले आकर सीट को वहां पे टफ माने क्या कहेगा जीतने में लेकर आ गई है। तो ऐसे स्थिति में हमको वेट करना चाहिए। दूसरी बात बता रहे क्या होता है कि जब हम सीट बाई सीट हम लोग करते हैं डायरेक्शन, तो कभी होता है आप याद रखिएगा दिल्ली का, दिल्ली में सारे लोगों का ये था कि सौरव भारद्वाज जीतेंगे, लेकिन सौरव भारद्वाज हार गए और अतिशी जीत गई। तो ये चेंजेज होता है कि ये सीटों पे सीट वाइज, चूंकि जब ओवरऑल हम जब करते हैं वहां पे जाके एग्जिट पोल, तो हम सीट टू सीट नहीं करते हैं। वो डेटा कलेक्ट करते हैं, तो किसी विधानसभा में 50 भी आता है, किसी में 100 भी आता है, किसी में 200 भी आता है। तो ये क्या होता है ओवरऑल वोट परसेंटेज जो आता है, जो कास्ट का वोट शेयर आता है, उसके हिसाब से फिर सीटों पे वो करते हैं।
0: तो अगर
3: तो इसमें चेंज होता है।
0: दो तीन फैक्टर्स आप कह रहे हैं कि अगर ये सीट चेंज होगी वो इसलिए क्योंकि महिलाएं ज्यादा आई हैं, मोर वुमेन हैव कम आउट टू वोट, एंड ओवरऑल देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ एंटी इनकंबेंसी एंड पोलराइजेशन, एंड द मुस्लिम्स आर जस्ट अबाउट एट 40%, सो It's not a Muslim majority seat. That's still
3: दूसरी बात बता दे रहे, sorry, आपको टोक रहा हूं। इस बार जो पिछले पोल है और इस बार में देखेंगे कि किसी किसी विधानसभा में 23% से ऊपर पोल गया है। ये भी हम लोग को ध्यान रखना होगा कि ये जो पोल बड़ा है वो 23% तक बड़ा है, 23% तक बड़ा है, तो कहां से गया।
0: Okay, so it's important to remember that South 24 Parganas also has seats now, which seem to be showing a trend for variety of reasons, most importantly, the removing of fake voters, the increased turnout of women and polarization, and finally that you have a 60-40 population breakup, a religious breakup, which is why some seats seem to be favorable to the BJP, which may flip. We are saying that there are at least 3 seats here, 1 in Howrah Uttar and 2 in South 24 Parganas, which might flip, and Diamond Harbour could be close. Let's take a look now at our second last, and we'll go very quickly because you know there is so much to talk, but I think we also want to pack in as many seats as possible so that on Monday you know what to look out for. There is going to be a deluge of information. Just keep your eyes on these 37. We've now come to Murshidabad and we've selected 4 seats over here. And this is going to be the decider. We're saying that here in Murshidabad, you will have the BJP keeping its seat of Behrampur and the main Murshidabad seat, despite the fact. ये समझाइए कैसे मनोजी, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी मुझे लगा ये जीत रहे हैं बहरामपुर।
3: नहीं, अधीर रंजन चौधरी टीएमसी के वोट को काट रहे हैं,
0: तो यानी कि बीजेपी का मार्जिन
3: बीजेपी के लिए होगा। और बीजेपी को जैसे हम मुर्शिदाबाद की बात करें, मुर्शिदाबाद में 22 सीटें हैं जिसमें से 20 ऑलरेडी टीएमसी जीती थी और 2 बीजेपी जीती थी। यहाँ पे बीजेपी को 2 सीट बढ़ने की उम्मीद की जा रही
0: है
3: मुर्शिदाबाद।
0: टोटल 20 में से इस बार वो 16 चार
3: सीटें जीत सकते।
0: कौन सी 2 और सीटें जीत सकते?
3: तो बहरामपुर दिख ही रही है सामने आपको, जो पिछली बार भी जीती थी ये था। 2 और सीटें
0: दो बढ़ रही हैं,
3: बढ़ रही हैं, तो उसका बैकअप अब
0: तो बहरामपुर और मुर्शिदाबाद ऑलरेडी उनके पास था। आप कह रहे हैं 2 और सीटें, आप जल्दी से देखिए कौन सी 2 और सीटें हैं, बिकॉज़ इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। मुर्शिदाबाद
3: तक आप उनसे ले लीजिए। मैं
2: आई जस्ट गिव यू अ फीचर ऑफ पद्मजा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स अ वेरी मुस्लिम डोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट। The two most prominent urban centers, which is Murshidabad and Behrampur themselves, have actually had a BJP winning candidate in 21, even in the Lok Sabha leads in 24.
0: Okay. So this is comfortably with the BJP.
2: The municipalities
0: then,
2: or corporations remain with the BJP.
0: Okay.
2: Yeah, both of them. And okay, the rest of the district goes mostly with the...
0: Let's quickly talk about Domkal.
2: Humayun Kabir is not the AJ UP guy. He's another guy.
0: He's the IPS officer.
2: Yeah.
0: So there are 2 Humayun Kabirs. One is a former IPS officer. TMC is going to keep this. Any thoughts on Reji Nagar? And actually, both of them have a Humayun Kabir. Reji Nagar is also where Humayun Kabir is contesting. Oh, we haven't even listed him
2: Reji Nagar
0: here.
2: Has
0: but it's going to be a tough contest.
2: Muslim voter.
0: Reji Nagar, by the way, is the seat where the so-called Babri Masjid is coming up. So that is what makes it a tough contest. So Reji Nagar, tough contest, and TMC is going to keep Domkal. Any
1: Reji Nagar, I won't say tough contest. It's 67% Muslim population.
0: Yeah, but Humayun Kabir is contesting there, no? So you have a decentish Congress candidate also in Reji Nagar. Yeah. So maybe he splits a little bit.
1: But again, I really don't fancy BJP's chances here, honestly.
0: Okay.
1: And in Domkal, I think it's not even a conversation we should have. It's a straight out TMC seat.
0: Why is that?
1: हाई मुस्लिम पॉपुलेशन 87%
0: आप बता रहे थे।
3: अब जो सेकंड दो सीटें आप पूछ रहे
0: जो बीजेपी बढ़ा सकती है मुर्शिदाबाद
3: फरक्काबाद फरक्का है जहां पे पिछली बार टीएमसी जो है 60,000 के लगभग करीब वोटों से जीते
0: सर फरक्का है 70% मुस्लिम पॉपुलेशन
3: उसके बाद भी इस बार कांग्रेस वहां से वोट ले आ रही है वोटों में डिविजन हो रहा है वहां
0: सर कैसे डिविजन हो रहा है अगर हम कह रहे हैं कि सारा मुस्लिम वोट एक तरफा होगा
3: तरफा नहीं हो रहा है देखिए मुर्शिदाबाद में टीएमसी को लेकर काफी नाराजगी है मुर्शिदाबाद मालदा यहाँ पे जाएंगे आप तो वहां पे मुसलमानों के अंदर टीएमसी को लेकर काफी
0: बुरा आई अग्री वक्फ को लेकर के है आपकी बाबरी मस्जिद को लेकर के है बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे फिर हमने जो डिस्कस किया कि अगर शोएंदु अधिकारी कह रहे हैं कि सनातन को बचाओ तो दूसरी तरफ भी तो टीएमसी कह रही है कि अपने को बचाओ एसआईआर से तो अगर अगर हिंदू कंसोलिडेट हो रहा है सनातन को बचाने के लिए तो मुस्लिम भी तो कंसोलिडेट होगा हमेशा रहा
3: था वो तो हमेशा रहा था इस बार उसको डिवीजन होते हुए
0: ठीक है अगर आप ये कह रहे हैं दैट एक्चुअल डिवीजन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन मुर्शिदाबाद बाद एंड मालदा एंड उत्तर दिनाजपुर दैट इज गोइंग टू चेंज द स्टोरी कंप्लीटली बट आई मीन आई थिंक दैट इज स्टिल अ लिटिल अप इन द एयर लेट्स टेक अ लुक एट दीज टू सीट्स इन मालदा एंड दिस आई थिंक इज क्वाइट क्वाइट क्लियर इट इज गोइंग टू स्टे विद द बीजेपी सिंपली बिकॉज मालदा एंड इंग्लिश बाजार आर द हिंदू पॉकेट्स
3: दूसरी बात बता दे रहे हैं हम लोग चीज को छोड़ पा रहे हैं मुर्शिदाबाद एक ऐसा जगह है जहां पे सबसे ज्यादा कांग्रेस की उम्मीद है और यहां पे वो 4 से 6 सीटों तक जीत सकती है ये वो कांग्रेस यहाँ पे सबसे ज्यादा
0: तुषार डजंट डिसएग्री तुषार डजंट डिसएग्री
1: इफ कांग्रेस इज विनिंग 4 to 6 सीट्स इन मुर्शिदाबाद आई डोंट थिंक देन बीजेपी विल हैव अ प्रॉब्लम हिटिंग 160
3: तो
1: नहीं नहीं नहीं मैं आपकी बात से सहमत हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुसलमान टीएमसी से इतना नाराज है कि वो कह रहे हैं मुझे कांग्रेस की तरफ जाना है मुझे कैंडिडेट को देखना है फिर हिंदू तो और कितना नाराज होगा कि वो और प्रेसिडेंसी रीजन में बीजेपी को और बुरी बड़ी तरीके से जताएगा द ऑन मैथमेटिकल टर्म्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हिंदू वोटर ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स द बीजेपी इज हायर देन द मुस्लिम वोटर गोइंग अवे फ्रॉम द टीएमसी अगर आप कह रहे हैं मुस्लिम वोटर टीएमसी की तरफ से जा रहा है तो फिर हिंदू वोटर भी तो बीजेपी की तरफ आएगा ना
3: हाँ, तो आएगा तो वो तो मैं तो कहीं रखू तो आएगा तो वोट डिवीजन के बाद तो हिंदू वोट तो एक तरफ आ ही रहा बीजेपी का
1: पर वो बाकी सीट पे भी लागू होता है फिर
3: वहां का जो था मालदा और मुर्शिदाबाद का अधिरंजन का एक अपना पकड़ है और अब मुर्शिदाबाद में जितने भी टीएमसी के लोग हैं वो सारे के सारे कहते हैं कि मेरे गुरु अधिरंजन जी है वो सिचुएशन के हिसाब से उनको उन्होंने खड़ा किया था और इस बार आप देखेंगे अधिरंजन को पार्टी के सपोर्ट कम पब्लिक के बीच में जबकि वो अपना खुद को सीट हार रहे हैं बरहमपुर सीट देखा जाए जहां से खड़े हुए हैं वो उनकी सीट खतरे में पड़ी हुई
1: है ऐसा तो नहीं कि एक पार्टी का सपोर्ट नहीं मिल रहा और दूसरी पार्टी का कहीं इलेक्शन के बाद मिलने लग जाएगा
3: ऐसा हो सकता
0: है इलेक्शन वेरी क्विकली आई वॉन्ट टू गो टू द नेक्स्ट सेट एंड आई थिंक वी वर लुकिंग एट कूच बिहार बट आई थिंक वी कैन सेफली स्किप दिस एंटायरली कूच बिहार अलीपुर द्वार दार्जिलिंग दीज आर एरियाज बट द बीजेपी हैज प्रीटी मच स्वेप्ट एंड आई थिंक यहाँ पे इट्स नो पॉइंट इन डिस्कसिंग लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेट बिकॉज दीज आर इफ देर इज वन प्लेस वेयर द बीजेपी कैन कॉन्फिडेंटली एंड सिंस आई हैव ट्रैवल्ड देयर इट इज लार्जली द डेमोग्राफी द पास्ट ट्रेंड्स एस आई आर डिलीशन इशूज इट ऑल पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ द बीजेपी दिस दो इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट नाउ वी हैव कम टू द जंगल महल एरिया एंड पश्चिम मिदनापुर Jhargram is going to stay with the TMC. Purulia is going to stay with the BJP. No surprises there. Bankura is going to stay with the BJP. Bankura mein problem nahi hai. BJP ke paas rahega.
3: वो बीजेपी माने मुझे लग रहा है कि बड़ा स्मृति निकल
0: देखो ओवरऑल जंगल महल में बताइए कितने सीटें बीजेपी अपनी इंक्रीज कर सकती है या डिक्रीज करेगी और क्यों
3: मुझे तो लग रहा है कि जंगल महल इस बार ऐसा है कि बीजेपी को पूरी की पूरी सीट जीतनी चाहिए
0: कितनी सीटें हैं
3: वहां पे करीब 7 सीटें हैं ना जंगल महल में 6 या 7 सीट है
0: नहीं जंगल महल पूरा मिला करके नहीं आपका ये बांकुरा पुरुलिया झारग्राम मिला करके देयर विल बी अबाउट 15 सीट्स एज फार एज आई नो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट मिला करके आप
3: उसको तो निकाल के कलेक्शन
0: आप कह रहे हैं कि 15 की 15 सीटें या पूरी इस डिस्ट्रिक्ट
3: पूरी स्थिति है
0: क्यों क्यों क्यों
3: वहां पूरी तरह से बदल गया और ऐसा भी नहीं
0: मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जितना मुझे याद है ये एक इलाका था जहाँ 2024 इलेक्शन में बीजेपी के लीड्स कम हुए थे तो अब क्यों बदल गया
3: 2024
0: ट्राइबल एरिया बीजेपी डिड वेरी वेल इन द 2020 डिड वेरी वेल इन द 2014 इलेक्शन हियर सॉरी 2019 इलेक्शन हियर बट इन 2021 दे डिडंट डू वेल इन वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शंस दे लीड्स वेल नाउ अब क्या बदला
3: इस बार ट्राइबल के बीच में
2: टू बी फेयर टू मनोज जी ये बांकुड़ा जो सीट है वहां 2021 में 1,500 का लीड था केवल बीजेपी का वो it became 8% in 2024. So Bankura is some sort of a consolidation in favor of the BJP.
0: No, I'm not talking about the seat. I am saying, Manoji has said that entire Jungle Mahal, the whole tribal belt could swing in the direction of the BJP. My question is why? What are the factors?
2: इसका हम थोड़ा background देते हैं. 19 में इधर political anecdote है. 19 में BJP swept this entire region in the Lok Sabha. What happened after that is there was post-poll violence, and there were murmurs that the BJP from the central government could not do much to help their own karyakartas there. So the performance went down in the next election, which was 21. However, by 24, the BJP seems to have recovered the confidence of its karyakartas and built more in 26, from where his numbers could be coming.
0: Okay. Another interesting factor is that there are a number of, for example, it's a very emotive issue. You've got a number of tribes there, right? So you've got the Santhals and then you've got the Kudmi tribe. Now, Santhals are perceived within the tribal community to be cornering most of the benefits. The BJP this time has made an outreach to the Kudmis and has even fielded two of the people from this tribal community. And they're hoping that in Purulia and in Jhargram, they are going to make gains.
3: अमित शाह जी ने बोला कुर्मी समाज बहुत दिनों से एक डिमांड कर रहा कि मुझे भी ट्राइबल में शामिल कीजिए और इस बार उन्होंने जाकर उन्होंने बोला कि मैं ही दे सकता हूं आपको
0: और इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूं कुर्मी समाज दिस कुर्मी ट्राइबल्स दे हैड वन टाइम स्टॉप्ड द रोड व्हेन अभिषेक बनर्जीज कॉन्वॉय वाज पासिंग सो दे हैड ब्लॉकेटेड द रोड एंड मेनी पीपल फ्रॉम दिस कम्युनिटी वर अरेस्टेड सो देयर इज एंगर इन द कुर्मीज एंड capitalizing on that, the BJP has fielded at least two candidates from here, quite sizable in few seats, may benefit them. Let's quickly go to our last. I want to quickly say Kharagpur Sadar. Kharagpur Sadar, Dilip Ghosh jeetenge.
3: Theek
0: hai, wo jeetenge. Okay, let's go to Asansol. Pashchim Bardhaman we had seen. Asansol South, we had Agni Mitra Paul. I think she is quite comfortable.
3: ये सारा comfortable है. यहाँ पे बिहारी बहुत सारे हैं. आपको ये सारा area में है. और यहाँ पे जो भद्रोलो की बात करते हैं, यहाँ पे उनकी पकड़ कम है.
0: ये बीरभूम की कहानी बताइए. ये flip क्यों कर रहा है? रामपुर हाट क्यों flip कर रहा है? ये टीएमसी से बीजेपी में क्यों जा रहा है?
3: हाँ, शिफ्ट वो एंटी इनकम्बेंसी वाला जो है, कास्ट वाला है सिचुएशन, जो पिछली बार के तरफ इस बार जो चेंजेज है उसी का वो है.
0: Okay, so we have done with the 37 seats that all of us and mostly Manoji has shortlisted and decided that these are going to be the seats. If you look out for the results here, you will pretty much be able to gauge the direction. Now look, if in Malda Murshidabad, you see the seats turning from the TMC to any other party, the Congress, the BJP, Humayun Kabir, that means that Muslim consolidation hasn't taken place in the nature that it was, you know, thought, and which means that the only party which will suffer will be the TMC. If there is even one seat that is lesser than their existing tally in the north, in Kuch Bihar, Alipurduar, Darjeeling, Siliguri, then the BJP is far from increasing their tally. They are possibly going to lose this election.
1: Yes.
0: And if you don't see any seats being flipped in the Kolkata region, in not 24 Parganas, it has to be, you know, a 3:4. 75% BJP has
1: watch
0: to win.
1: Watch out for not 24 Parganas if it's not flipping towards the BJP.
0: And Jungle Mahal.
1: Not 24 Parganas alone is enough.
0: Okay.
1: Because the magic number of 148 warrants that the BJP has to get all its math right across certain districts.
0: All right. So we...
3: उससे भी कम लूंगा. चार डिस्ट्रिक्ट, पांच डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहां पर बीजेपी खाता नहीं खुल पाई थी. अभी कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पर बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा.
0: आपके हिसाब से?
3: जी, मेरे हिसाब से.
0: ओके, सो ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स आर गोइंग टू सी द बीजेपी मेकिंग इनरोड्स एंड इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 3 to 4 districts where they have 100% score. If you see that happening on counting day, remember where you heard it first, because this is NDTV, the OG of elections. Thanks for watching.

0: Moving globally, trust Agarwal Packers and Movers Limited. 9300 300 300.
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज़।